0: नेपालकै एकमात्र अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा सन् 2016 डाक्टर लियोनार्ड लिङ्को फाउन्डेसनद्वारा बेस्ट डाक्टर अवार्डद्वारा सम्मानित डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठ एनएमसी 19393 बिडिएस दिल्ली एफएजीसी मणिपाल सर्टिफाइड इम्प्लान्ट एन्ड लेजर डेन्टिस्ट्री अमेरिका सर्टिफाइड बोटक्स एन्ड फिलर स्पेसलिस्ट युरोप एडभान्स सर्टिफिकेट इन जेनरल डेन्टिस्ट्री क्यानाडा मिनी रेजिडेन्सी इन इन्डो डेन्टिक्स साउथ कोरिया यी विभिन्न देशहरूमा अध्ययन गरेका डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठद्वारा उपचार गरिने अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा।
1: विशेषताहरू: दुखेको दाँतहरू जराबाट नै भरेर नदुख्ने बनाउने, बच्चाहरूको दुखेको दाँत जराबाट भर्ने, किरा लागेको दाँतलाई भर्ने, दाँत निकाल्ने, दाँतमा खोल लगाउने र दाँत नभएको ठाउँमा दाँत हाल्ने, मेटल क्राउन, बाङ्गो दाँतलाई तार बाँधेर सिधा गर्ने, वृद्ध अवस्थामा भएको बुढाबुढीको पुरा दाँतको सेट लगाउने, दाँतलाई प्रत्यारोपण गर्ने, चाउरी परेको अनुहारलाई राम्रो पार्ने, आँखा तल खाल्टो भएकोलाई भर्ने, सबै उपचारहरू दूरबीनबाट गरिने, डिजिटल एक्सरे सेवा।
2: सम्पर्क गणपति क्लिनिक, सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज, नर्सिङ होम नजिकै कुसुम पेट्रोल पम्पको सामुन्ने, पासङलाम रोड जाने बाटोमा। फोन नम्बर 081-531-366 र 98-085-49-451।
3: दैनिक रु 197 रु 50 लाखको बिमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान,
4: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवनको लागि।
5: व्यावसायिक कृषि पद्धति अप्नाएकला किसान हुक्रन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग ओ तालिम केन्द्र खजुरा बाँकेके विशेष अनुरोध।
6: कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक पद्धति अप्नाई हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी ओ बनाई। कृषि पेसा हे मर्यादित बनाएक उद्यमशीलता विकास कैके रोजगारी सृजना करी ओ कराई।
5: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई।
6: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू करी।
5: सफल उद्यमी बनी हो व्यवसाय है निरन्तरता दी आगे बढाई हो बढाइक लगाई। कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई। एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निसेकना हुईले ओहर से हमरे निजी और सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकारिक लाग प्रयास करी वो कराई।
6: थप आवश्यक सरसल्लाह वो जानकारी लाग लगभग संघीय वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय वो स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करेक लाग अनुरोध बा।
5: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तालिम केन्द्र खजुरा बाँके।

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
2: टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
4: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज

है किन लायो हराई जाने माया, कसलाई लायो खै अधुरो गराई जाने माया, अहो पराई जाने माया, अहो पराई जाने माया।

वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 9805532568।

0: toilet pony, yeah. Extreme energy drink.
1: व्यावसायिक कृषि पद्धति अप्नाएकला किसान हुक्रन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग ओ तालिम केन्द्र खजुरा बाँकेके विशेष अनुरोध
2: कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक पद्धति अप्नाई हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी ओ बनाई कृषि पेसा हे मर्यादित बनाएक उद्यमशीलता विकास कैके रोजगारी सृजना करी ओ कराई
1: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई
2: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू गरी
1: सफल उद्यमी बनी हो व्यवसाय हे निरन्तरता दि आगे बढाई हो बढाइक लगाई कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निसेकना हुईले ओहर से हमरे निजी और सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकार्य लाख प्रयास करी वो कराई
2: थप आवश्यक सरसल्लाह वो जानकारी लाग लगभग संघीय वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय वो स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करेक लाग अनुरोध बा
1: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग और तालीम केन्द्र खजुरा बाँके
3: हाम्रो बिहे भएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो सबैले एउटै प्रश्न सोध्छन् खुसीको खबर कहिले सुनाउने भनेर
4: मलाई थाहा छ तिमी कति पीडामा छौ तर हामीले अहिले आशा मार्नु हुँदैन
3: कति अस्पताल धायौ कति उपचार गरायौ अब त सपना पनि अधुरै रहने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ
4: होइन हामीसँग अझै आशा छ मैले शुभश्री आईवीएफ क्लिनिकको बारेमा धेरै सुनेको छु जहाँ धेरै दम्पतिहरूको काख भरिएको छ
5: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री आईवीएफ क्लिनिक अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित
3: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो
4: धन्यवाद शुभश्री आईवीएफ हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा
5: थप जानकारीका लागि शुभश्री आईवीएफ क्लिनिक सोल्टीमोड काठमाडौँ फोन नम्बर 9816 14 16 99

आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: के तपाईँले आफूले प्रयोग गर्ने तोरीको तेलको शुद्धता चेक गर्नुभएको छ? तोरीको तेलको क्वालिटी तपाईँ आफै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति तेल आफ्नो हातमा लगाई बाँच्न सक्नुहोस्। शुद्ध तोरीको तेलमा नेचुरल राग सधैँ आउँछ र त्यो नेचुरल राग धारा शुद्ध तोरीको तेलमा सधैँ आइरहन्छ। हो, तपाईँले पनि तेलको क्वालिटी आफै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। याद राख्नुहोस्, सबै तेल धारा तोरीको तेल जस्तै शुद्ध चाहिँ नहुन सक्छ। विगत 3 दशकदेखि नेपालीको मुटुलाई स्वस्थ बनाउँदै नेपालको पहिलो एनएस चिन्ह प्राप्त शुद्ध तोरीको तेल धारा, मुटु चाहिन्छ मुटु।
1: होइन, कौशल्या मेमोरियल अस्पताल यही थियो त।
2: ओहो बाजे, अब उता आइन, ठ्याक्कै यता हेर्नुहोस् त, पूर्वपट्टि। हाम्रा सेवाहरू: इन्टरनल मेडिसिन तथा फ्यामिली फिजिसियन सेवा, हार्ट जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ सेवा, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ सेवा, प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा, नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ सेवा, दाँत बङ्गारा तथा मुख सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा, एकुपंक्चर तथा फिजियोथेरापी सेवा, 24 घण्टा रोड एक्सिडेन्ट इमर्जेन्सी सेवा, 24 घण्टा ल्याब एक्सरे र ख वर्गको एम्बुलेन्स सेवा, एयर कन्डिसन इमर्जेन्सी वार्ड, स्ट्यान्डर्ड वार्ड तथा
3: हजुर। कौशल्या मेमोरियल अस्पताल, कोहलपुर नगरपालिका, वडा नम्बर 9, हलदारपुर बाँके। सम्पर्क नम्बर 0184140007 र 98482-63-399।
4: दैनिक रु 197 रु 50 लाखको बिमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान,
5: सूर्य ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स, जीवनको लागि।
6: बीर डेंटल
7: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दाँत तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमांडू तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आर के लामिछाने द्वारा उपचार गरिन्छ।
8: डाक्टर लामिछाने द्वारा गरिने विशेष उपचारहरू: दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्रा तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
7: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक, भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
8: फोन नम्बर 081-532-375।
9: व्यवसायिक कृषि पद्धति अप्नाएकला किसान हुक्रन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तालिम केन्द्र खजुरा बाँके के विशेष अनुरोध:
10: कृषि क्षेत्रमा व्यवसायिक पद्धति अप्नाई हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी हो बनाई, कृषि पेसा है मर्यादित बनाएक उद्यमशीलता विकास कै के रोजगारी सृजना करी हो कराई,
9: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी, खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई,
10: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई, व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू करी,
9: सफल उद्यमी बनियो व्यवसाय है निरन्तरता दि आगे बढाई हो बढाइक लगाई, कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई, एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निसेकना हुईले ओहर से हमरे निजी व सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकारिक लाग प्रयास करी वो कराई,
10: थप आवश्यक सरसल्लाह वो जानकारी के लाग लगभग संघे वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय वो स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करेक लाग अनुरोध बा।
9: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग व तालीम केन्द्र खजुरा बाँके।
11: ओहो, आज डाई नै मजा लागत हो, मजा से दवाई करेना कहतु।
12: ए तो ओकर लाग कान्ति आरोग्य अस्पताल जाई न, पश्चिम नेपाल के अनुभवी वो उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डॉक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कान्ति आरोग्य अस्पताल नेपालगंज में मिलत।
11: ए बाट ठिक कैलो साच्ची की अस्पताल में का का सुविधा मिलत
12: वहाँ त 24 घंटा इमरजेंसी सेवा दैनिक ओपीडी सेवा दूरबीन और लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया जरल घाव उपचार करना संगे NICU PICU ICU हाईटेक ऑपरेशन थिएटर हो सुरक्षित प्रसूति सेवा फे वहाँ पा जाए छोट बच्चा हो भरखर जन्मल बच्चन के सामान्य से लेके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे उहा कई जाए
11: ए ओसिनो कलसे उहाई जाए मन फे ढुक्क हुइना चाहल रह
12: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा सम्पर्क नम्बर 081-535-717 कान्ति आरोग्य अस्पताल अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा
6: दाई धेरै समयदेखि महिनावारी गडबडी सेतो पानी बग्ने र पेट दुख्ने समस्याले साह्रै दुख पाएकी छु कहाँ जाँदा राम्रो होला
13: म पनि पहिला ग्यास्ट्रिक पाइल्स र पेटको समस्याले धेरै हैरान थिएँ पछि नेपालगञ्जको मेडिकेयर क्लिनिक गएँ त्यहाँ महिला र पुरुष दुवैका समस्याको उपचार र अपरेसन

0: आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतान प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर नेपाल का अपने क्यूआर।
1: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाख को बीमा तिरेको सम्पूर्ण प्रीमियम फिर्ता सूर्य ज्योति सही प्लान
2: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स जीवन को लागि।
3: ओहो आज दाई नै मजा लागठो मजा से दवाई करेना कहटो।
4: ए तो ओकर लाग कान्ति आरोग्य अस्पताल जाई न। पश्चिम नेपाल के अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डाक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कान्ति आरोग्य अस्पताल नेपालगंज में मिलत।
3: ए बात तो ठीक कैलो साची की अस्पताल में का सुविधा मिलत त?
4: वहाँ त 24 घंटा इमरजेंसी सेवा दैनिक ओपीडी सेवा दूरबीन और लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया जरल घाव उपचार करना संगे एनआईसीयू पीआईसीयू आईसीयू हाईटेक ऑपरेशन थिएटर हो सुरक्षित प्रसूति सेवा फे वहाँ पा जाए। छोट बच्चा हो भरखर जन्मल बच्चन के सामान्य से लेके जटिल रोग संगे सकू प्रकार के रोग के उपचार फे वहाँ कई जाए।
3: ए ओसिनो कला से वहाँ जाए मन फे ढुक्क हुईना चाहल रह।
4: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउ रोजना हो। कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा। सम्पर्क नम्बर 081-535-717। कान्ति आरोग्य अस्पताल अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा।
3: कान के समस्या बा उपचार कराइकला कहाँ लैजिना हो?
4: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केन्द्र मा जाइन। वहाँ त अनुभवी चिकित्सक को वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक से हरेक दिन कान के परीक्षण हुई। ओतरकेल कहाँ हो? वहाँ तो लंबा समय से कान पक्ती रहना जीर्ण रोग काने ढुसी कान खजोइना कान कम सुन्ना कान दम्म होइना विटामिन के उपचार और परामर्श वो लंबा समय से कान पकती रहले कान के जालिम पाल परल कान हड्डी खैना रोग के ऑपरेशन कई के उपचार हुई। वाकर संगे कान कम सुनना विटामिन के लाग कान में लगाइना सस्ता व महंगा ढेर प्रकार के कान के मशीन विटामिन के रोजाई अनुसार के उपलब्ध फे करा जाए। जस्ते बीटीई सीआईसी आरआईसी जैसी मशीन फे वहाँ मिलत।
3: ए ओसिड हो कल से बुढ़ू हो वहाँ ले जाके उपचार करेले से वजह से सुनो से कही ता?
4: एकदम समय में उपचार करेले से उपचार संभव बा। बागेश्वरी स्वास्थ्य सेहार केन्द्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98-84-2697 98-85-23-697 वो 98-014-83-697। बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में सहभागी हुई नियमित कान के जांच करी।
3: खुशी के खबर खुशी के खबर। हमार शहर नेपालगंज में ढेर बरस से सेवा देती आयल नेपालगंज नेशनल अस्पताल में ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से रोज दिन स्वास्थ्य सेवा देती आयल बा। ई अस्पताल में रोज दिन ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से ओपीडी सेवा देना के संगे ढेर सेवा देती रलेक जानकारी कराईटी।
4: जस्तक सर्जरी के सक्कू उपचार प्रसूति व स्त्री रोग के सक्कू उपचार नसा व हड्डी रोग के सक्कू उपचार मस्तिष्क व मानसिक रोग के सक्कू उपचार छाला रोग के उपचार नाक कान घाटी रोग के सक्कू उपचार सेवा देती आयल बा।
3: ओस्तक सुगर ब्लड प्रेशर मुटु रोग पेट छाती कलेजो संबंधी सक्कू उपचार पैथोलॉजी लैब सेवा वीडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे और सबको सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पतालक संगे हरेक महीनक अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल के सुगर और थायराइड रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमन ब्राल ऐना जानकारी फेन कराईटी।
4: नोट ई अस्पतालम कार्यरत सबको डॉक्टरन से हरेक महीनक अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा देना संगे जांच में 20% विशेष छूट के व्यवस्था करल बा। नेपालगंज नेशनल अस्पताल बीपी चोक नेपालगंज संपर्क नंबर 081536465 98249806665 वो 98482804465।

0: मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक एक बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज
1: कार्यक्रम घर अंगना के अंतर्गत शनिचर के दिन
2: स्वास्थ्य शिक्षा आयुर्वेदिक नुस्खा सहित घर अंगना में हम लोग आवाज आई
1: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज से देखा भी जाए और सुना भी जाए।
3: दिन भर चाहे जहां रही हो हमार पिया
2: शनिचर के दिन और साथ ही हमार सखी चंदा
1: और हमार सखी संध्या कार्यक्रम घर अंगना
2: के

0: नमस्कार सखी।
1: नमस्कार सखी, नमस्कार। और का हाल चाल?
0: हाँ, हाल खबर सब बढ़िया है सखी।
1: हाँ, ठीक भी होक चाहिए। हाँ। बढ़िया भी होक चाहिए।
0: और आपके कैसा है बताओ?
1: हमारा बढ़िया है। अब बढ़िया कहीं परत है, मजबूरी में भी बढ़िया।
0: मगर बहुत आज बहुत धीमा धीमा बोलो तो, उदास उदास, मतलब कुछ कुछ कुछ ठीक है।
1: मतलब अभी शुरुआत करे हैं ना आप, हमका पहले से परेशान करे लगे हो। मतलब धीमा बोली था। हाँ। जोर जोर से चिल्लाई
0: ना। तो एक होते, एक होते हाँ हाँ ठीक है ठीक है, एक ही होते, और एक होते हाँ ठीक है सखी।
1: तो आपका कहक चाहे कि सखी कुछ परेशानी है
0: तो का? वही तो हम पूछे वाले रहे। हाँ। कि कुछ परेशानी का बात है आज?
1: पूछे वाला ना रहा करो ना, डायरेक्ट पूछ दिया करो। आधा बात मन में दबा लेते
0: तो हमार बातिया तो मन से निकले ना दे, तो पहले पट से बोल दे तो
1: निकले ना दे,
0: तो निकालित रहे मन से। और आप पहले, अच्छा चलो कोई बात नहीं, अच्छा ही बताओ कुछ परेशानी है का?
1: परेशानी बस ये गर्म है।
0: गरम है?
1: हाँ,
0: तो गरम तो सबके लिए है ना, हमरे लिए भी है गरम।
1: तो आप आज उदिन आपको मूड पिरात रहा है। हाँ, ज्यादा गरम। हाँ, आज हमरे लाग गवा है, बरसता साए हन, एकदम गरम गरम खौला पानी तना हवा लागत है। पानी तो ना देखो, पानी की बात नहीं करे हैं, जैसे हवा भी जैसे लागत है हम लोग का जरा
0: गरम है, लपट फेंकत है, आग आग बरसत गोला
1: ऐसे में ऐसा लागत है। कुछ और भी स्वास्थ्य की समस्या पड़ सकत है, तो रास्ता में आवत आवत थोड़ा परेशानी लागे ला की मतलब अता गरम है।
0: अस बात है?
1: हाँ बस तो ऐसे है।
0: अच्छा तो ठीक है। और का तो
1: ठीक
0: तो
1: मतलब
0: तो
1: है, हाँ, बात है तो
0: मतलब थोड़ा सा थकान तो लगिन जाते, फिर तुरंत आए के फिर हम लोग बात बात कही करे लगा
1: रहा है ना। पहले से मार बजाए रहे, प्रोमो बजाए रहे, तो हम दौड़त दौड़त आए कि सखी कहूँ अब ही ना कह दें कि तो मतलब देर कह दिए हो सखी आप, फिर हम उनका लाग जाती
0: जनते हो सखी। थोड़ा हम थोड़ा ज्यादा ही मारे बजाए थे ना, कि जहाँ के साथी लोग, श्रोता साथी लोग जहाँ बैठे हुई है सब इकट्ठा हो जाए।
1: हाँ, तो ये म्यूजिक सुन के इकट्ठा हो ही गवा।
0: हाँ, इकट्ठे हो गए।
1: बजाए देना है कि घर अंगना में जुट के आप लोग बैठ जाओ, हम लोग घर अंगना
0: जहाँ भी हुआ जाता बैठ जावा जाए।
1: तो आई तो गवा का है सखी हम लोग, अभी ही जो हम लोग गठरी लेके आवा का है, तो आप लोग ध्यान से सुनते रहा जाए कार्यक्रम घर अंगना। आप लोग जाना जाते हैं 1 बजे से 3 बजे तक हम लोग के साथ रहा जाए और साथ जरूर दिया जाए। तो आज के गठरी में हम लोग यही मौसम से मिलत, जो कि अभी सखी हमसे कहीं नहीं परेशान हो, तो सही बात है। जब हम लोग थोड़ी देर इमेर घाम में चला जाते तो अत्ता परेशानी है, अजीका दिन भर काम करे पड़ते घाम में। अभी शायद किसानी के काम बहुत जोर है, लेकिन क्या करा जाए, खेतन में पानी नहीं है, फिर भी निराश मन लेके भी आदमी खेते में जुटा है। तो ऐसे समय में आदमी अपने सेहत का बचाव है कि अपने खाए खातिर उपजनी करे कि सेवा करे, ऐसे समय में हम लोगों का बहुत से कुछ रोग लाग सकत है, जिसके ऊपर आज हम लोग बातचीत करा जे। तो स्वागत करा जाते संपूर्ण श्रोता लोगन का कार्यक्रम, और संपूर्ण सखी लोगन का भी स्वागत करी थे। कहे से अब हमारे सखी कही दे लोग, खाली श्रोता लोगन का कहागा
0: अब ये है सखी, श्रोता मत तो सब कोई आए गए, चाहे सखी नहीं नहीं कहो कहो जिसे अब सखी कही दियो तो सखी वाला प्रोग्राम में भी हुए ना,
1: ना कही तब हूँ मतलब सुने के ना पड़त कुछ
0: नहीं, वो बात नहीं। अब श्रोता जो जिसे श्रोता की का कहते सखी पता है
1: की का कहा
0: बताई दो आप
1: ना, हमका नहीं पता है।
0: अरे जो ये प्रोग्राम का सुनत है वही तो श्रोता हुए।
1: अच्छा हाँ ठीक है, तो हम सखी का भी जोड़ दिया।
0: हाँ।
1: अब सखी लोग भी श्रोता हुए, श्रोता भी संपूर्ण श्रोता हुए, और साथ ही हम का लोगन जो हम लोग बैठे हैं ना आप लोगों के समक्ष, तो हम लोग आप लोग से बातचीत करे खातिर परेशान भी हैं। तो जाना जाते कि हर एक हफ्ता हम लोग कोई नया विषय वस्तु लेके आवा जाते, और महीना के अंतिम शनिचर में
0: फोन इन कार्यक्रम रहा थे।
1: तो महीना के अंतिम फोन इन में क्या होते कि आप लोग से हम लोग प्रत्यक्ष बातचीत करा जाते, जो श्रोता हम लोग का फोन करा थे उनसे भी हम लोग परिचय लेके बातचीत करा जाते। लेकिन इमा क्या है कि हम लोग आप लोगन से जैसे कार्यक्रम सुने भूल गवागा या फिर से सुना जाते है, तो एक सुने खातिर और भी तरीका है, समय नहीं दे पावागा है, तो हम लोग के का कृष्ण सार FM के कृष्ण सार ID फेस है, फेसबुक है, उमा पोस्ट होते है,
0: और आप लोग सुन सका जाते
1: होते है, और उसके बाद आपके यूट्यूब में जाते है, और हमारे लोग के अपन व्यक्तिगत जो ID रहते जैसे हमारे सखी चंदा, ऐसे हम संध्या, इससे हम लोग ये कार्यक्रम का छोटा मोटा वीडियो बना के पोस्ट भी करा जाता है। तो जरूर आप लोग अगर सुने भूल गवा जाए और से सुने एक मन लागे तो आप वीडियो फेसबुक द्वारा सुन सका जाते हैं।
0: हाँ तो सखी ठीक है, ये हम लोग जो है साथी लोगन के यहाँ जानकारी भी करावागा है ना, ये जरूरी भी है कि प्रोग्राम जिसे बाय चांस इंसान अब कोई भी काम में अगर बिजी है ना सुन पाइस है ना, तो इमा आप लोग सर्च करके सुन सका जाते, जो मेरे सखी बताइन है जो मतलब ID, तो जो है हम लोग कौन विषय में बातचीत करा जाइए इसके बारे में तो हम लोग बाद में बतावा जाइए, बाकी तो
1: हाँ, बाद में बतावा जाए, चाहे आप सोचा ना जाए ज्यादा, आप हमरे तरफ देख के उधर बोला जाते है हमका पता है। और हम पहले कह दिया कि रास्ता से आवत जो परेशानी है तो हम लोग के दिमाग में तो चलिन गया कि का हो चाहिए,
0: का हो चाहिए,
1: जो हाल हम लोग का समस्या है उसके ऊपर बातचीत करा जाए।
0: गर्मी
1: सबका भी बचा,
0: हाँ, और गर्मी से हम लोग का प्रभाव पड़ा था और यही सबसे बचे के खातिर ही हम लोग बात बत कही भी करा दिए
1: हैं। कहा है कि हम लोग का लू लागे ज्यादा समस्या रहा था ना, कि जैसे अत्ता हद से ज्यादा गर्म है और जो हवा चला तो वह गर्म रहा था। तो हम लोग के सबसे पहले तो कहा जाता पानी ना कमी होइक चाहिए, फिर भी कोई समस्या से का होता पानी भी पिया जाता है लेकिन शरीर में इम्यूनिटी पावर या कुछ समस्या है तो लू लग जाता है।
0: ठीक है,
1: लू लागे के बाद कैसे बचा जाए, का का अपनावा जाए, घर में हम लोग का अपना सका जाता है, इसके बारे में तो अब जानकारी दी जाए।
0: नहीं नहीं दे दो अभी, दे दो अभी,
1: नहीं आपसे कहीं वो करबे के गीत संगीत सखी सुना हो तो आप अब हमका कुछ ना कुछ कह दे,
0: यही मारे
1: कि बोलते रहे,
0: यही मारे
1: कहां चुप हो जा सकी तब हम चुप भाई।
0: हम आपका थोड़ा सा का इशारा दिए ना, आप तो पूरा पोथी पतरा खोल के बैठ गए। अरे बात
1: मैं खोले हैं,
0: बात वही हुआ, बात वही हुआ ना।
1: ठीक है, अभी गदरी आप पे कह दे देबे, अब देखी थे आप कैसे ना खोलियो।
0: अरे अभी बहुत टाइम पड़ा है सखी, बहुत टाइम पड़ा है, 3 बजे तक हम लोग बात बत कही करा चाहिए, तो अब बहने से बताए दो तो हम सोच रहे हैं थोड़ा सुनाए देतीन कुछ।
1: अच्छा,
0: और
1: अच्छा का सकी सुनाए दो।
0: हाँ, आप टाइम चला के बस सुनाए दी, अभी रुक जाओ फिर अब।
1: मतलब एक के मिनट आधो मिनट नहीं वो आपके टाइम
0: अब व्यापारी विश्राम में आई गवा है।
1: चलाकी कर रही हो आप, चलाकी करो,
0: मुंह बंद कर ले तो सुना देती।
1: ठीक है, मुंह बंद कर लिया।
0: ठीक है, अब थोड़ा इंतजार करो, इंतजार के फल मीठा होते पता है ना आपका।
1: ठीक है, तो फल मीठा शायद आम भी मीठे हो जाते तो
0: आम के सीजन भी है।
1: तो चला जाए,
0: ठीक है, और
1: कहाँ चला जाए,
0: व्यापारी विश्राम की तरफ।
1: ठीक है, व्यापारी विश्राम की तरफ,
0: छोटा है
1: कार्यक्रम, घर अंगना सुनते रह जाए।
2: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
3: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा होए के साथ हैं, तमाम मेर के सेवा होता रहा जानकारी करावा चाह जाता है, जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: शुगर ब्लड प्रेशर हृदय रोग पेट छाती कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते,
3: वीडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं, हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवेग जानकारी भी करावा जाता है।
2: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ जाँच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
3: संपर्क नंबर 081536465, 98239806665 और 98482804665।
4: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
5: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाओ ना, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं, और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं, साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी सीआईसी आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
4: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
5: हाँ, तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके, संचालक पूरन चौधरी, संपर्क नंबर 98480206697, 98580236697 और 98014883697।
2: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
6: वाओ प्लस टू परीक्षा पनि पास भयो अब कुन कलेजमा भर्ना हुने होला
7: ल है बधाई छ अनि तिम्रो उज्जवल भविष्यका लागि उत्कृष्ट विकल्प नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी छ नि
6: ए हो र त्यहाँ के पढ्न पाइन्छ त अनि त्यहाँको विशेषता पनि भन्देऊ न
7: त्यहाँ ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडीज बीबीएस तथा एसीसीए कार्यक्रमका लागि भर्ना खुला भइसकेको छ दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकद्वारा गुणस्तरीय शिक्षण वातानुकूलित एसी कक्षा कोठा समृद्ध पुस्तकालय अतिरिक्त क्रियाकलाप नियमित फिल्ड भिजिट तथा औद्योगिक भ्रमण आधुनिक शिक्षण वातावरण र विद्यार्थी मैत्री व्यवस्थापन सहित आफ्नो उज्जवल भविष्यको यात्रा सुरु गर्न सकिन्छ
6: ल तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद त्यसो भए म पनि यही भर्ना हुन्छु
3: हजुर प्लस टू परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण गर्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना उच्च शिक्षाको उत्कृष्ट गन्तव्य नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसीमा ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज बीबीएस तथा एसीसीए कार्यक्रमका लागि भर्ना खुल्ला भइसकेको छ
6: नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी आदर्श ग्रुपद्वारा सञ्चालित ठेगाना नेपालगञ्ज 10 बाके औद्योगिक क्षेत्रको ठिक अगाडि थप जानकारीका लागि सम्पर्क 98 5 80 36 5 77 98 5 80 28 195 र 98 5 80 36 811 नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी सफल भविष्यको बलियो आधार

आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतान प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतान प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर नेपाल

0: सखी।
1: हाँ सखी,
0: का करा जाए, गर्म के वजह से कुछ काम करे मन नहीं लगा था। नहीं श्रोता, आप लोग के समझ भी, हम लोग बैठा का है, 3 बजे तक बातचीत करा जाता तो नहीं, हमारे लोगन के भी समय थोड़ा कट जाता है। ऐसे आप लोगों का हुई, ऐसे उलझन हुई, कह रहे थे कुछ काम करे मन भी नहीं लगा था, और एक जगह बैठो तो गर्म से बैठे मन भी नहीं लगा था, तो करा कहा जाए, है ना।
1: अब करा कहा जाए, अब जो मतलब बात करे वही करा जाए।
0: ये बात है, हम तो ये तो भूल ही गए रहे कि हाँ सखी से समस्या रखा है, तो सखी जोन बात करे के वो करा जाए।
1: और
0: ये बात तो सही है,
1: जो साथी लोगन का बतावे के हम लोग जो फील करा आगा, जैसे आप वहाँ से आए हो थकान लगा, और ये मई जून के जो महीना होते हैं, मई तो चला गया, आप जूनो भी जाते हैं, जून थोड़ा सा बचा है, तो बस यही है कि ई माँ जो हम लोगन के ऊपर जो स्वास्थ्य पर असर पड़ा था, लू जो लगत है नहीं, तो उससे हम लोगन जो उससे बचे के खातिर का करा जाए, यही के बारे में बातचीत करा जाए। और का
0: तो सही, अब बचे के मारे तो पहले तो हम लोगों का लू लाग जाता है कहा जाता है, अब लू लाग जाता है बहुत चीज बचावा जाता है, लेकिन फिर भी अगर समस्या में कोई लक्षण भी रहा थे कुछ, कि अभी तो नहीं है कि हाँ लू ही लाग गया, हवा पानी लाग गया, इसे बीमार होएगा, कैसे बीमार होए से वो के पहले लक्षण भी रहा थे,
1: पहचान होते
0: का लक्षण दिखावे लागत है। जैसे अब गर्मी में हम लोग का जो भी जैसे डायरिया के लक्षण कहा करा, तो डायरिया से लक्षण यहू मिला करत है। लू लागे पर क्या होते कि जैसे हम लोग का तेज बुखार आवत है, नहीं मुड़े में एकदम दर्द रहा था, चक्कर आवत है, और जैसे बार बार बहुत प्यास लगत है, तेज प्यास लगत है कि आदमी और ठंडा ठंडा पानी ढूंढे लागत है।
1: हाँ, पानी प्यास के ज्यादा इच्छा होते है, बहुत पानी पी कही के मेरे के लक्षण होने लगा।
0: हाँ, चेहरा भी जैसे मतलब चेहरा भी जैसे लाल लाल हो लगा था, थकान तो रहता है, लाल दिखाई लगा था, छाला लाल बन दिखाई लागत है, कमजोरी आवत है अंदर से, ऐसे लागत है कि बहुत कमजोरीपन फील होता है, और ऐसे उल्टी और जी मचलाए लागत है। ये सब चीज़ें का होते लू लागे के कारण में लक्षण रहा है। अभी के कारण का रहा थे कि कारण लू लागे पर कारण का रहा था, जैसे बहुत तेज जो घाम रहा था हद से ज़्यादा, तो हद से ज़्यादा तो इसे है ही श्रोता कि घाम बहुत ज़्यादा रहा था इसे, है नी, और मतलब घाम इतना तेज लागत है कि हम लोगों का सही नहीं पावा जाता है। और जैसे अब कहा जाता है पर्याप्त मात्रा में पानी पीक चाहिए, कहा तो जाता है हर कोई, हम लोग कहा जाता है, अपने आप का भी प्रयोग करें में महसूस हो ही जाता है कि हाँ जत्ता अनुसार हम लोग का पानी पीक चाहिए उतना हम लोग पी नहीं पावा जाता है। कभी काम के व्यस्तता में पानी आगे बोतल रखा है या गिलास रखा है तो ठीक है, नहीं तो हाँ पानी पीबे पीबे कहात कहात 2-3 घंटा भी बीत जाता है, लेकिन ऐसे मौसम में हम लोग का पानी पिए एकदम उपयुक्त रहता है और ज़रूरी एकदम रहा है। और गर्मी के कारण से हम लोगों का ज़्यादा थकान महसूस होने लागत है, अब भारी काम करा जाता है उससे भी कमजोरी फील होने लागत है, कैसे एक तो थकान वैसे रहा है, ऊपर से काम अगर कोई भारी काम रहा था तो, और हम लोग का वो सांस के बैलेंस जो रहा था हम लोग का गर्मी के कारण से वो थोड़ा नीचे ऊपर होने लागत है, पसीना अधिक आवब है, नमक पानी जैसे पसीना बहुत से हद से ज़्यादा, वो भी एक इन्फेक्शन के रूप बने लागत है, शरीर में खुजलाहट होने लागत है, और शरीर में तापमान तापक्रम जो हमारे लोग का रहा था नियंत्रित में नहीं रहा था, वो इससे भी हम लोग के शरीर एकदम हीट गर्म रहा था, और ऊपर से गर्म के मौसम है ये है, तो ये सब कारण से जब हम लोग बाहर निकला जाता है तो शरीर के तापक्रम से ऊपर से घाम इतना तेज रहा था सही नहीं पाता, तो हम लोग का नुकसान
1: कही जाते हैं ठंडा गर्म की वजह से।
0: हाँ, तो इसे बहुत से कारण है ना सखी, कि जैसे लू से बचे खातिर तो सोचा जाता है कि हम लोग लापरवाही ना करा जाए, फिर भी हमारे लोग के दिनचर्या काम ऐसा रहा था कि जान के भी हम लोग उस जगह में उस चीज़ से गुजर जावा जाते जिसे हम लोग का लू लागे संकेत हो
1: जाता है।
0: अब हम लोग अपने आप का बचे खातिर वैसे तो घरेलू चीज़ें बहुत से चीज़ें हैं जो कि हम लोग बच सका जाते हैं, लेकिन अब घरेलू चीज़न में क्या होता है, दिन भर एक जगह आदमी बैठ नहीं पावत है ना, काम ना काम करे रहा था इधर उधर, तो वो जो हमारे लोग के काम के व्यस्तता रहा थे सकी, उससे हमारे लोग के लापरवाही बढ़ जाते हैं,
1: लापरवाही बढ़ जाते हैं।
0: जैसे कहा ना कि अब हम पानी पिए हैं, अब आगे गिलास रखा है पानी है,
1: काम की वजह से अरे थोड़ी देर के बाद
0: जाना जाते हैं, तो ऐसे ताजा पानी भी लाओ तो लगभग 15-20 मिनट में लगा था
1: गर्म
0: पानी हुआ है, तो आदमी फिर सोचा था कि हाँ तो ताजा पानी लाएंगे तब पी, तो व्यस्तता के कारण भी अब्बे कहात कहात भी जो हम लोग का पर्याप्त
1: अब्बे कहात कहात तब भी जाते, तो बस यही है कि लापरवाही हम लोग खुद कर लिया जाते
0: हैं। हाँ, है ना, लागत काम तो है।
1: लागत तो है,
0: लागत तो है
1: वही तो, हम तो भी लागत
0: करा जाए, लापरवाही ना करा जाए, पानी पर्याप्त मात्रा में
1: पिया जाए, सखी आपो ना करो, जैसे अब्बे पीबे काम बहुत है, काम के जो है जिम्मेवारी के वजह से।
0: अच्छा आप हमका सुना रहे हो, हम आपका सुना रहे हैं, लेकिन यही दोनों चीज
1: आप ठीक है
0: नहीं श्रोता, आप लोग भी समझ जाओ,
1: और हम एक दूसरे का ना कहे तो किससे, अब बाकी साथी लोगन का भी बताइए, हम लोग
0: साथी बतावा भी जाते हैं,
1: बतावा भी जाते हैं, पानी पिया जाए, काम तो होते रही है, और पानी
0: तो काम होते रही है, बतावा रहा जाए, ऐसे तीन बजे साथे रहा जाए, तो फिर कुछ सुना है दिन जा यही बात पर।
1: अच्छा
0: अब फिर हमारे सखी सोचे लगी,
1: लो ठीक है, और का सुना देते सखी,
0: अब आप कुछ कंजूसी हो लागे, लागत है,
1: ऐसी बात नहीं है, अब आप कह दी हो तो सुना दी था,
0: फिर चला जाएगी,
1: अब इतने प्यार से बोला थे तो कह दी, तो सुना दी, और का लो चलो।

0: बीर डेंटल
1: नेपालगंज शहरमा संचालित अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न बीर डेंटलमा दाँत तथा मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार काठमाडौँ तथा भेरी अञ्चल अस्पतालका अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आरके लामिछानेद्वारा उपचार गरिन्छ।
2: डाक्टर लामिछानेद्वारा गरिने विशेष उपचारहरू: दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत आउने, पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेँलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्र तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
1: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
2: फोन नम्बर 081-532-375। नेपालकै एकमात्र अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा। सन् 2016 डाक्टर लियोनार्ड लिङ्को फाउन्डेसनद्वारा बेस्ट डाक्टर अवार्डद्वारा सम्मानित डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठ, एनएमसी 19393, बिडिएस दिल्ली, एफएजिसी मणिपाल, सर्टिफाइड इम्प्लान्ट एन्ड लेजर डेन्टिस्ट्री अमेरिका, सर्टिफाइड बोटक्स एन्ड फिलर स्पेसलिस्ट युरोप, एडभान्स सर्टिफिकेट इन जेनरल डेन्टिस्ट्री क्यानाडा, मिनी रेजिडेन्सी इन इन्डो डेन्टिक्स साउथ कोरिया, यी विभिन्न देशहरूमा अध्ययन गरेका डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठद्वारा उपचार गरिने अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा।
1: विशेषताहरू: दुखेको दाँतहरू जराबाट नै भरेर नदुख्ने बनाउने, बच्चाहरूको दुखेको दाँत जराबाट भर्ने, किरा लागेको दाँतलाई भर्ने, दाँत निकाल्ने, दाँतमा खोल लगाउने र दाँत नभएको ठाउँमा दाँत हाल्ने, मेटल क्राउन, बाङ्गो दाँतलाई तार बाँधेर सिधा गर्ने, वृद्ध अवस्थामा भएको बुढाबुढीको पुरा दाँतको सेट लगाउने, दाँतलाई प्रत्यारोपण गर्ने, चाउरी परेको अनुहारलाई राम्रो पार्ने, आँखा तल खाल्टो भएकोलाई भर्ने, सबै उपचारहरू दूरबिनबाट गरिने, डिजिटल एक्सरे सेवा।
3: सम्पर्क गणपति क्लिनिक, सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज नर्सिङ होम नजिकै कुसुम पेट्रोल पम्पको सामुन्ने, पासङलाम रोड जाने बाटोमा। फोन नम्बर 081-531-366 र 98-085-49-451।
4: नेपालगञ्जका लागि सुपर स्पेशियालिटी विशेषज्ञ सेवा सहित आएको छ शिखर हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर प्राली। हाम्रा सेवाहरू अनुभवी तथा विशेषज्ञ चिकित्सकको साथमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार र परामर्श, गम्भीर मृगौला रोग, डायलेसिस व्यवस्थापन, मृगौला संक्रमण, पत्थरीको निदान तथा उपचार, सुगर र उच्च रक्तचापको उपचार व्यवस्थापन तथा मृगौला प्रत्यारोपण तयारी र निगरानीको लागि पश्चिम नेपालमा एकमात्र डिएम नेफ्रोलोजिस्ट डाक्टर सौरभ। एपेन्डिक्स, पित्त थैली, आन्द्रा, कलेजो सम्बन्धी समस्याको उपचार तथा दूरबिनबाट अपरेसन सेवा, पेटको क्यान्सरको शल्यक्रिया र इन्डोस्कोपी कोलोनोस्कोपी जाँचका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट आउनुभएको एमसिएच ग्यास्ट्रो तथा हेपाटोबिलियरी सर्जन डाक्टर प्रदीप थापा। नवजात शिशु तथा बाल रोगको उपचारको लागि कान्ति बाल अस्पताल काठमाडौँमा पूर्व कार्यरत डाक्टर प्रतिमा खड्का। प्रसूति तथा स्त्री रोगको उपचार तथा शल्यक्रियाका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट आउनुभएकी डाक्टर प्रेरणा मल्लिक। साथै गुणस्तरीय प्रयोगशाला, इन्डोस्कोपी जाँच, इसिजी, इइजी, एनसिभी, एक्सरे तथा भिडियो एक्सरे जाँचका साथै सम्पूर्ण किसिमका स्वास्थ्य समस्याहरूको विशेषज्ञ डाक्टरबाट गुणस्तरीय उपचार र परामर्शको सुविधा रहेको छ। सम्पर्क शिखर हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर प्राली, भेरी अस्पताल अगाडि रामलीला मैदान जाने बाटो, रोयल क्याफे भएको बिल्डिङ, नेपालगञ्ज। सम्पर्क फोन नम्बर 081-530-220 र 98-41-586-979। 081-530-220 र 98-41-586-979।
5: हाय रे दीदिया, हमार टिहुनी बहुत पिरात है, बहुत दवाई कराए डाले, नाई ठीक आते।
6: सुनो बहनी, खुशी के खबर,
7: अब ऑपरेशन के खातिर काठमांडू और लखनऊ दौरे धूपे न पड़ी। पश्चिम नेपाल में यह एकमात्र आधुनिक अल्ट्रासाउंड के सुविधा है।
6: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ मूत्र और दिल गुर्दा रोग के सब ऑपरेशन दूरबीन प्रविधि के द्वारा किया जाता है। और वहाँ पेट संबंधी सब मेर के दवाई, पित्त थैली के पथरी, अपेंडिक्स, हार्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, फीसर भगंदर जस पुरुष लोगन में यहाँ लिंग, ब्रे और अंडकोष और मर्दांगनी के कमी हुए समस्या साथ कैंसर संबंधी सब दवाई ऑपरेशन किया जाता है। और जानत हो, हाथ गोड़ करिहाव, रीढ़, टिहुनी पिराप, झंझनाहट हो, नस पिराप, झमझमाव, हड्डी टूट फूट भवा है तो दवाई और ऑपरेशन के साथ प्लास्टर बांधा जाता है। महिला लोगन में यहाँ सफेद पानी बहाव, महीनावारी में यहाँ गड़बड़ी, नी संता एकांता गर्भवती लोगन के नियमित चेक जांच, बच्चेदानी और स्त्री रोगन के सब मेर के दवाई के साथ ऑपरेशन किया जात है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता कंसल्टेंट सर्जन यूरो सर्जन जनरल कैंसर मूत्र रोग तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राहुल मिश्रा कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हार्ट जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ।
6: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड सुर्खेत रोड आदर्श नगर नेपालगंज 10 बांके वन कार्यालय के नेरेन पेट्रोल पंप के पछुए। संपर्क नंबर 081-5531000।
9: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाख को बीमा तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान,
10: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवन को लागी।
11: अम्मा के दवाई करावे के है लेकिन समझ में नहीं आवत है कि कौन अस्पताल में ले जाए।
12: कांति आरोग्य अस्पताल है ये है, काहे चिंता लेत हो। पश्चिम नेपाल के अनुभवी और उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शैली चिकित्सक द्वारा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा भी यहाँ उपलब्ध है।
11: अच्छा, माने अस्पताल में यहाँ कौन कौन सुविधा है? तो
12: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन और लेजर पर विधि से शल्यक्रिया, जले घाव के उपचार करे साथ NICU, PICU, ICU, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, सुरक्षित प्रसूति सेवा, बाल बालिका और नवजात बच्चन के सामान्य रोग से लेके जटिल रोग तक सब मेर के उपचार भी उपलब्ध है।
11: अस है तो अम्मा के यहाँ आज लेके जाये थे कांति आरोग्य अस्पताल में। यहाँ
12: कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज, सब मेर के उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एक छत के नीचे। संपर्क नंबर 081-5-35-7-17।

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाऊ ना, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारे के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 9840206697, 9850823697 और 9804483697। बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजेको छ।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।
2: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस्ट सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा है, कहाँ जाई तो ठीक रही, तनी बताई दियो हमका।
3: सुना जाए आपका हम बताई थे, आप नेपालगंज में यहाँ अपने घर के खातिर ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब प्राली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ ऑर्डर के अनुसार बेड सोफा डाइनिंग टेबल ऑफिस टेबल ड्रेसिंग टेबल दराज जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथन टिकाऊ सामान आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथन बनावा भी जात है।
2: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथन आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जात है।
3: एक दफे सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बांके संपर्क नंबर 9844885375 और 9808245437।

0: toilet bunny, yeah. Extreme energy drink.
1: भैया बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं। कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
2: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहें। बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए। वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होते है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
1: सही, वहाँ का सेवा मिलते है तो भैया?
2: सुनो, हुआ औरतन के बांझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यहाँ गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
3: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नाम दर्ता कह के तहे दिल हुआ जाए।
2: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ। संपर्क नंबर 97649 11786, 98224 92377। सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।
4: सोचे भन्दा सस्तोमा हाई क्वालिटी का सोफा र फर्निचर चाहियो, आउनुहोस् सोफा हब नेपालगंज।
5: हरेक सामान को खरीद में 1,000 देखि 20,000 सम्म छूट, 10 देखि 15 वर्ष सम्म को वारेन्टी, साथ ही फ्री डेलीवरी को सुविधा पनि। अहिले थमाथम बिक्री भइरहेको छ।
4: स्थान राजा चोक राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक को अगाड़ी।
5: संपर्क 97051148 47।
4: सोफा हब नेपालगंज,
5: विश्वास में नंबर 1,
4: क्वालिटी में सबैभन्दा बेस्ट।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज
1: कार्यक्रम घर अंगना के अंतर्गत शनिचर के दिन
2: स्वास्थ्य शिक्षा आयुर्वेदिक नुस्खा सहित घर अंगना में हम लोग आवाज आई
1: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज से देखा भी जाए और सुना भी जाए।
3: दिन भर चाहे जहां रही हो हमार पिया
2: शनिचर के दिन और साथ ही हमार सखी चंदा
1: और हमार सखी संध्या कार्यक्रम घर अंगना।

एगो मेहरारू अपना मरो से कहतिया जे हमरा साथ लगता एगो सामान भी हमरा के आन दी आ जौन जौन कहते नहीं आन दी का कहतिया

0: हाँ सखी,
1: हाँ सखी,
0: तो अरे
1: हाँ
0: कही थन कि मतलब कुछ भूले तो नहीं
1: हाँ
0: हो?
1: कुछ शांत हन हम लोग दोनों
0: ठीक
1: जना, और
0: हो?
1: आज गर्म हद से ज्यादा, कुछ
0: हाँ
1: तापक्रम ज्यादा है सखी। बात ये है कि बोलते बोलते थोड़ा आलस लग जाता है, वैसे भी पानी हम लोग सामने रखे हन, और पानी
0: आखिर धोए खातिर कि पिए खातिर?
1: और दोनों काम लागत है।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: मतलब झपकी आवे अगर तो
1: आप जी के
0: आखिर धो ले।
1: जे जोन चीज जे महसूस करी वही तो बोली है नहीं, उका वो चीज के अनुभव रहा थे। और
0: अच्छा ये सारा आप क्या मेरे तरफ
1: नहीं
0: है
1: सारा कोई के तरफ नहीं है,
0: अनुभव?
1: आपके हो आके धोए खातिर की पानी पिए खातिर,
0: अब
1: तो ये
0: अगर
1: पानी तो दोनों चीज में काम लगत है
0: हाँ वही तो,
1: ना।
0: अगर झपकी आवत है, नींद लगत है ना, उंघाई
1: हाँ
0: लगत है आलस के मारे, तो मुंह धो ले तो फ्रेश हो जाते का।
1: फ्रेश भी हो जावा जाता है, और पानी अगर पिया करा जी बीच बीच में, तो जो
0: हाँ
1: आलसपन रहा थे, जो आंखी झपकब या नींद आवब, जो कमजोरीपन अपने आप को उलझन लगा थे, ये भी थोड़ा दूर हो जाता है।
0: दूर हो जाते हैं। बात सही है,
1: हाँ बात तो सही है,
0: बात सही
1: लेकिन
0: है।
1: बात ये है कि हम लोग आज बातचीत करा जाते हैं लू के बारे में।
0: लू के बारे में? हाँ
1: गर्म
0: हाँ
1: मौसम में जो लू लाग जाते हैं, तो उसी साथ साथ हम लोग जैसे अपने गर्मी महीना में अपने आप का बचे खातिर का करे चाहिए, तो
0: हाँ
1: सबसे पहले है तो जो आगे हम लोग बातचीत करा जाते हैं पानी। ये हमारे लोगों के एक कहा नहीं है कि ये हमारे लोगों के एकदम अमृत बाण है, पानी एकदम जरूरी है।
0: जरूरी
1: और
0: है।
1: पानी के साथ साथ जैसे हम लोग बाहर निकला जाए, तो सकभर हल्का रंग के कपड़ा है नहीं, सूती के कपड़ा, जैसे आजकल का होते गाढ़ा रंग के कपड़ा पहना जाता, वैसे भी आज हम लोग सूती तो सूती है, लेकिन थोड़ा
0: चटकता
1: गाढ़ा
0: है,
1: भी मिक्स गाढ़ा है मिला है,
0: मतलब
1: लेकिन जहाँ
0: हल्का
1: तक
0: है,
1: हाँ
0: हल्का
1: हल्का
0: है।
1: कपड़ा हल्का रंग के पहनने के चाहिए, और साथ ही साथ सूती के कपड़ा जैसे ढका पूरा बाही के ढील डाल कपड़ा ही में पहनने के चाहिए। तो सूती के कपड़ा पहनने से क्या होते सखी कि थोड़ा पसीना, जैसे पसीना सोखत भी है, और जब पसीना का होते हवा हल्का लागत है, तो अपने आप का ठंडा भी लागत है।
0: ठंडा भी लगता
1: और
0: है।
1: जो
0: हाँ
1: हम लोग के और कपड़ा जैसे मान लो साटन है, सिल्क है, ये सब का होते हवा आर पार नहीं होते देते, और शरीर का उलझन बनाए देते, और पसीना और ज़्यादा निकारे लागत
0: निकारे लगते हैं,
1: है
0: और
1: ने।
0: फिर अंधौरी के भी समस्या हो जाते हैं,
1: हाँ अब
0: छोटे
1: वो
0: छोटे
1: पूछो
0: लाल
1: ना
0: लाल।
1: कि गर्मी से तो हम लोगों के कत्ते समस्या हैं, कत्ते
0: बहुत
1: समस्या
0: समस्या है,
1: हैं
0: बच्चे भी परेशान,
1: ना,
0: बड़े भी
1: दाना निकलत
0: परेशान,
1: है, एलर्जी हो
0: बुजुर्ग
1: लात
0: भी
1: है,
0: परेशान।
1: खुजलाहट होत है, और बड़े से लेके बूढ़े तक सब कोई
0: सब
1: परेशान
0: परेशान है
1: रहत है।
0: गर्मी से। बस सब लोगन का आशा की, अब आशा है कि अब पूछो ना कि आशा कहाँ
1: ना
0: है।
1: ना ना आपके पूरा बात हम सुने थे, बीच में नहीं बोले
0: हाँ
1: हैं।
0: तो वही बात है, सबका यही उम्मीद है कि पानी बरस जाए, ऊपर वाला
1: हाँ
0: पानी बरसाए दे, सब लोग
1: हाँ सही
0: इंतजार में
1: बात है
0: है,
1: कि हम लोग
0: कुछ
1: का
0: राहत
1: भगवान से
0: मिल
1: हम
0: जाए।
1: मनावा जाता है कि
0: लेकिन
1: सकभर।
0: सखी थोड़ा अगर पानी बरसी तभो तो नए राहत मिली, मतलब कम से कम कुछ देर बरसे, है ना? कहे कि धरती के प्यास बुझी है तभी तो, नहीं तो अब अच्छे से बुझी धरती की प्यास। और थोड़ा पानी अगर जैसे बरस गवा तो और गर्म लगे लगत है, गम्स फेंके लगत है, उमस।
1: वो तो है ही है, अब जैसे
0: हाँ
1: पानी ज़्यादा भी बरसी तबुन तसकी एक दो दिन के
0: हाँ वही
1: बाद
0: बात है,
1: जब सुखाई, तो उमस। अभी बरखा महीना में तो ये समस्या रहते हैं,
0: रहते
1: लेकिन
0: हैं।
1: अगर समय समय में पानी बरसा था तो फसल उधर होए लागत है नहीं। जैसे मान लो धान के बियाड़ होई के बाद, धान के बियाड़ के बाद बैठौनी शुरू हो जाते है, तो जब वो हरियाली शुरू होते तो थोड़ा तापक्रम भी कम हो जाता है।
0: कम हो
1: कहत
0: जाते
1: नहीं
0: हैं।
1: है जितने बिरुवा हरियाली रहा थे वो जगह में थोड़ा तापक्रम कम रहा था, तो ये अनुसार कहा होता है खेतन में जब सब खेत हरे हरे दिखा रहा था, और वाला सावन भी आई गवा, अब जब इधर हम लोग निराश रहे जब खेत में हरियाली ना आई, तो सावन के फिर उधर से खुशहाली बत्ता ना आए सकत
0: नहीं
1: है।
0: हाँ, तभी
1: यही
0: तो
1: मारे
0: जब
1: पानी तो
0: पानी बरसी
1: बरसे,
0: तभी तो हरियाली
1: पानी
0: आई।
1: समय समय में बरसे, अब समय से ज्यादा बाद में बरसी, उसके बाद भी थोड़ा बरसत है, थोड़ा में भी का के अभी से खेत अत्ता सुखान है
0: हाँ जब
1: कि थोड़ा
0: जरूरत
1: पानी
0: है,
1: में कोनो समस्या हल ही ना हुई।
0: हाँ जरूरत के हिसाब से पानी अगर ना बरसे थे तो बहुत दिक्कत हो जाते। अब
1: हाँ
0: खेती
1: और
0: किसानी के लिए भी अब जो है पानी ना बरसी अगर तो धान उपजाऊ कैसे हुई है, धान कैसे, फसल कैसे तैयार हुई है।
1: हाँ सखी, और ये पानी जो बरसत नहीं है, जो
0: हाँ
1: तापक्रम बढ़त जाता है, यही
0: तापक्रम
1: से
0: बढ़ा
1: हम लोगों
0: जाते
1: के
0: हैं,
1: स्वास्थ्य में समस्या भी बढ़ते जाते हैं।
0: बढ़ते जाते
1: अब यही
0: हैं।
1: से दाना कहाँ नहीं जाता है, अभी तो मुँह से कह दिया गा कि दाना खजुलाहट, लेकिन जी के भवा है उका समस्या पूछा जाए कि कत्ता रहस नहीं होते,
0: रहस
1: हाथ
0: नहीं
1: नहीं
0: होता।
1: रुकत है, खजुलाहट छाला लाल हो जाता है, अंधौरी से तो वैसे भी लाल आता है, अंधौरी भी बड़ी बड़ी अंधौरी दाना तना निकले लागत है, ऐसे
0: फुंसी
1: में का
0: निकले
1: करा
0: लगा थे,
1: जाए
0: मतलब
1: कि
0: तमाम मेर के, हर मेर के
1: हाँ
0: किस्म के
1: इमा
0: दाना
1: सकभर
0: निकले
1: अगर
0: लगे
1: आप
0: थे।
1: लोग खाए पावा जाए, तो सवेरे नीम के पत्ती 4-5 पत्ती जरूर खावा जाए खाली पेट, और कहा से बच्चे तो ना खाए पई है, ऐसे भी होते हैं, लेकिन जे ना खाए पाओ तो का हम लोग का बचे के उपाय तो जैसे पानी के कहा का पानी पिया जाए। अब ज़्यादातर जैसे हम लोग घाम में निकलेगा ऐसा काम करा हो जैसे सकभर घाम में ना निकलक पड़े, सवेरे संझा के वो काम का ही पावा जाए तो घाम से थोड़ा बचे कोशिश करा जाए। लेकिन कहते कहा सकी हम लोग तो ये कार्यक्रम 1 से 3 बजे रखा गया है तो घाम में तो ओहिन पड़ा, तो ऐसे बाध्य जो काम से बाध्य है जिसे हम लोग, लेकिन जब निकला जाए तो जैसे मान लो टोपी भवा
0: सावधानी पूर्वक निकला जाता
1: है, ऊंचा भवा, ऐसे हम लोग भी दुपट्टा साल ये सब चीजें प्रयोग करा कि घाम से डायरेक्ट बचे खातिर कुछ उपाय सोचा जाए। आंखी में है जैसे चश्मा लगावा जाए, ग्लव्स लगावा जाए, ऐसे चीजें जो कि डायरेक्ट घाम हम लोग का असर न पड़े। तो ये सब चीज हम लोग के बचे वाला चीजें हैं जो अपने शरीर खातिर कैसे बचा जाए। ढका कपड़ा पूरा पहना जाए तो घाम डायरेक्ट छाला में असर न पड़ी, ऐसे बहुत से उपाय हैं। अब जैसे खाना में है तो मसालादार खाना ज्यादा ना खावा जाए, इससे पहले भी हम लोग बातचीत करा करा ना, ज्यादा तला भुना ना खावा जाए। तो सादा खाना और वो ज़्यादा तरल पदार्थ में खाना खावा जाए, जैसे कि जिसमें रसा ज़्यादा हो, जिसका झोल कहा जाता है,
0: पानी की मात्रा ज़्यादा हो,
1: हाँ ये सब चीज़ें खाए से हम लोग के स्वास्थ्य में थोड़ा समस्या का हम लोग दूर भगाई सका जाते हैं।
0: तो ठीक है सखी, बात बत के तुम लोग करते रह जाइए, अभी व्यापारिक विश्राम की तरफ चला जाए।
1: ठीक है सखी, चला जाए व्यापारिक विश्राम
0: के बाद प्यारा सा गीत सुना जी।
2: अब सुन्नुहोस् श्री स्टील्स रेडियो कथा तेस्रो तथा अन्तिम भाग। शर्माजीको घरलाई भूकम्पले हल्लाइरहेको छ, झ्याल बाहिर धुलोले ढाक्छ, बत्ती फोन सबको लाइन काटिन्छ, सब धेरै डराएका हुन्छन्, तर एकछिनमा भूकम्प रोकिन्छ। शर्माजीले श्री FE550D ले बनाएको घरलाई फेरि केही भएको हुँदैन, अनि त्यसपछि शर्माजीको परिवारको जिन्दगी ढुक्कले चल्न थाल्छ। अनि वर्षौं पछि फेरि एक दिन ठुलो भूकम्प आउँछ। श्री FE550D सर्वोत्कृष्ट भूकम्प प्रतिरोधक स्टील।
3: के तपाईले आफूले प्रयोग गर्ने तोरीको तेलको शुद्धता चेक गर्नुभएको छ? तोरीको तेलको क्वालिटी तपाई आफै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति तेल आफ्नो हातमा लगाई बाँच्न सक्नुहोस्। शुद्ध तोरीको तेलमा नेचुरल राग सधैँ आउँछ र त्यो नेचुरल राग धारा शुद्ध तोरीको तेलमा सधैँ आइरहन्छ। हो, तपाईले पनि तेलको क्वालिटी आफै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। याद राख्नुहोस्, सबै तेल धारा तोरीको तेल जस्तै शुद्ध चाहिँ नहुन सक्छ। विगत 3 दशकदेखि नेपालीको मुटुलाई स्वस्थ बनाउँदै नेपालको पहिलो NS चिन्ह प्राप्त शुद्ध तोरीको तेल धारा, मुटु चाहिन्छ मुटु।
4: वाउ, प्लस टू परीक्षा पनि पास भयो, अब कुन कलेजमा भर्ना हुने होला?
5: ल है, बधाई छ। अनि तिम्रो उज्जवल भविष्यका लागि उत्कृष्ट विकल्प नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस NMC छ नि।
4: ए हो र, त्यहाँ के पढ्न पाइन्छ त? अनि त्यहाँको विशेषता पनि भन्देउ न।
5: त्यहाँ ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज BBS तथा ACCA कार्यक्रमका लागि भर्ना खुल्ला भइसकेको छ। दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकद्वारा गुणस्तरीय शिक्षण, वातानुकूलित AC कक्षा कोठा, समृद्ध पुस्तकालय, अतिरिक्त क्रियाकलाप, नियमित फिल्ड भिजिट तथा औद्योगिक भ्रमण, आधुनिक शिक्षण वातावरण र विद्यार्थी मैत्री व्यवस्थापन सहित आफ्नो उज्जवल भविष्यको यात्रा सुरु गर्न सकिन्छ।
4: ल तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, त्यसो भए म पनि यही भर्ना हुन्छु।
6: हजुर, प्लस टू परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण गर्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। उच्च शिक्षाको उत्कृष्ट गन्तव्य नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस NMC ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज BBS तथा ACCA कार्यक्रमका लागि भर्ना खुल्ला भइसकेको छ।
4: नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस NMC आदर्श ग्रुपद्वारा सञ्चालित, ठेगाना नेपालगञ्ज 10-12 औद्योगिक क्षेत्रको ठिक अगाडि। थप जानकारीका लागि सम्पर्क 98-580-36-577, 98-580-28-195 र 98-580-36-811। नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस NMC सफल भविष्यको बलियो आधार।

0: हाँ सखे,
1: हाँ सखे,
0: सुनो गीत कितना अच्छा रहा है ने? अब हम अपने गीत के हम का तारीफ करिए, आप बताओ ना कैसा रहा है इस जलती धूप में गाना, कुछ ऐसा रहा है ना?
1: नहीं मतलब आपके अपन गीत होएगा, हमारे गीत नहीं बवा है,
0: नहीं मतलब हम ही सुनाए हैं ना, हाँ। हमारे गीत कहूं का हम गाए थोड़ी ना हैं।
1: अब ऐसे गर्म के मौसम है ये है सखी,
0: हाँ,
1: हाँ। अब गीत संगीत का होता है जब कभो कभो सुने के मिलत है तो बड़ा ध्यान से और बड़ा
0: अच्छा लगता है। मौसम अनुसार,
1: मौसम अनुसार है, गर्म तो है ये है,
0: कूलर पंखा सब बेकार,
1: तो सब बेकार तो है ये है, यहाँ भी बेकार है सब।
0: हाँ मतलब है, इसी बात बेकार नहीं है, लेकिन का है कि हवा ना लगत है, उमे हवा गरम गरम आवत है।
1: अब क्या करा जाए तो अब
0: तो ठीक है, और का करा जाइए, एडजस्ट करा जाइए और का, जैसे भी
1: ठीक है
0: थोड़ा बहुत
1: ठीक है। अब क्या करा जाए, ऐसे गीत संगीत और सुने के मिला, थोड़ा आलस थोड़ा भाग जा तो अब सुने के मिला तो इमा और खुशी के
0: तो
1: बाद का ना चार चांद लग जा, तो चार चांद लगा दी जाए, ऐसे एक बार सुना का थोड़ा और सुन ली जाए
0: ले, तो पहले व्यापारी विश्राम के तरफ चला जाए, कहे कि समय हो चुका है।
1: हाँ तो ठीक है, चला जाए व्यापारी विश्राम की तरफ।

0: वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 98025 32568।
1: कुष्ठ रोग अभिशाप न होए इके उपचारों भी संभव है। वही से कुष्ठ रोग के बारे में हम सब लोगन के यहाँ जानकारी पावे जरूरी है।
2: शरीर में यहाँ न खजवाए, छुए से जान न मिले, लाल और खर्रहा दाग दिखाए तो कुष्ठ रोग के शंका कई सका जाते। असल लक्षण अपनक या तो दूसरे के में यहाँ दिखाए तो जुड़तीन स्वास्थ्य संस्था में यहाँ जाए के जाँच करावा जाए। सब स्वास्थ्य संस्थान में यहाँ कुष्ठ रोग के दवाई निःशुल्क मिलत है।
1: समय में यहाँ उपचार यानी दवाई किए से कुष्ठ रोग पूर्ण रूप में यहाँ नीक होए के साथ है शारीरिक अपांगता होए से भी बची सका जात है।
2: जानकारी रहक चाहिए। कुष्ठ रोग बीमारी से प्रभावित और उनके परिवार के यहाँ भेदभाव करब कानूनी अपराध हो। साइनिंग अस्पताल INF नेपाल बांके द्वारा जनहित में जारी संदेश।

0: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना।
1: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवानिवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ENT विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ENT कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको 7 दिन सेवा उपलब्ध छ। हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे, इन्डोस्कोपी, प्रयोगशाला, अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ। विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज, सम्पर्क फोन नम्बर 081531380, मोबाइल 98580-3479 र 98480-21380।
2: हाम्रो बिहे भएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो। सबैले एउटै प्रश्न सोध्छन्, खुसीको खबर कहिले सुनाउने भनेर।
3: मलाई थाहा छ तिमी कति पीडामा छौ, तर हामीले अहिले आशा मार्नु हुँदैन।
2: कति अस्पताल धायौ, कति उपचार गरायौ, अब त सपना पनि अधुरै रहने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ।
3: होइन, हामीसँग अझै आशा छ। मैले शुभश्री IVF क्लिनिकको बारेमा धेरै सुनेको छु, जहाँ धेरै दम्पतिहरूको काख भरिएको छ।
4: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री IVF क्लिनिक, अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक, आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित।
2: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो।
3: धन्यवाद शुभश्री IVF, हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा।
4: थप जानकारीका लागि शुभश्री IVF क्लिनिक, सोल्टीमोड, काठमाडौँ, फोन नम्बर 98-61-14-16-99।
5: अम्मा के दवाई करावे के है, लेकिन समझ में ना आवत है कि कौन अस्पताल मा ले जाए।
6: कांति आरोग्य अस्पताल है, ये है, काहे चिंता लेत हो। पश्चिम नेपाल के अनुभवी और उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शैल्य चिकित्सक द्वारा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा भी यहाँ उपलब्ध है।
5: अच्छा, मनी अस्पताल में यहाँ कौन कौन सुविधा है? तो
6: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक OPD सेवा, दूरबीन और लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया, जले घाव के उपचार करे साथ NICU, PICU, ICU, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, सुरक्षित प्रसूति सेवा, बाल बालिका और नवजात बच्चन के सामान्य रोग से लेके जटिल रोग तक सब मेर के उपचार भी उपलब्ध है।
5: अस है तो अम्मा के यहाँ आजे लेके जाये थे कांति आरोग्य अस्पताल में। यहाँ
6: कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज, सब मेर के उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एक छत के नीचे। संपर्क नंबर 081535717।

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हरेक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारे के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98583-697 और 98014-83-697। बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
0: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
1: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो, एक साथ तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाहा जात है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
1: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
0: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ जांच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
1: संपर्क नंबर 081-536-465, 98-249-80-665 और 98-482-80-465।

0: आलम है तन्हा हम तुम है गोरी, आलम है तन्हा हम तुम है गोरी। नैना लड़ाई लियो ना हो, नैना लड़ाई लियो ना, कि पंखा कि पंखा कि पंखा झेलब तोहका।
1: हाँ सखी,
2: हाँ सखी,
1: सही बात है, गरम बहुत लागत है नहीं।
2: हाँ आप गाना सुना सुना के और याद दिलाया, पंखा ले आओ, कूलर ले आओ, दुनिया के बातें कहत कहत दिमाग में वही हुई जी कि अब आदमी रास्ता में लेके पंखे लेके चलवे साथे,
1: तो
2: कूलर भी साथे ले, कोनो बेज बात नहीं कि आदमी कूलर ना साथे लेके चले लागे, है नहीं। बातें वैसे अब गर्म ऐसे है ये है
1: नहीं, अब देखो ना कते सेल्सियम डिग्री गर्मी बढ़त है कि हवाइये काम नहीं करते,
2: काम तो नहीं करता। हाँ। हवा हवा कहते हैं ना, हवा गर्म है ना, तापक्रम के कारण से हवा गर्म ही हुआ है। और बातों यही है कि भाई इसे तो आदमी भी बहुत बीमार होते हैं, है नहीं। तो अब पंखा हाथ में लेके चले पड़ा, चाहे पंखा लेके चला जाए, चाहे कूलर लेके चला जाए, हवा तो गर्म है,
1: जहाँ बैठा जाए वहाँ चाहे एसी लगवा लिया जाए, मगर फिर भी गर्म नहीं। देखो सखी कहा है, जब तक पानी न बरसी कुछ राहत न मिली।
2: बात तो सही कहा तो आप,
1: और सबके लिए अच्छा है पानी बरस जाइए तो सबके लिए
2: अभी
1: अच्छा।
2: पानी बरसावा कैसे जात, वैसे जस्ट ना आपका हाथ हो,
1: ये तो ऊपर वाले के हाथ में
2: तो सजीला हो।
1: हम लोग कहा तो जाते आसानी से कह दिया जाते, लेकिन अब ऊपर वाले की मर्जी हुई तब तो हम लोग के हाथ में तो है नहीं।
2: अगर पानी बरसे और समय समय बरसे तो कुछ समस्या
1: समाधान, तो समय समय पे बरसे
2: है नहीं। और कैसे जितने पानी नहीं बरसते है उतने रोग हम लोगों का उत्पन्न होते जाते हैं और शरीर में कई प्रकार के रोग लग जाते हैं। और वही से हम लोग वही मैके छान के सिलू के बारे में जो रखा गया है, ये हम लोगों के समस्या हो ये। और ये मौसम के अनुसार बहुत कहा जाता है कि जैसे लू से बचे होते तो जैसे जो प्याज होते वो प्याज में से जो एक सफ़ेद प्याज होते उज्जल उज्जल उगा हम लोग साथ में अपने बैग में भी रख सका जाते और उस का हो तो उससे कुछ हम लोग का लू से ही बचावत है।
1: अच्छा
2: हाँ,
1: प्याज अपने पास रखो तो लू से बचत है।
2: हाँ उस बचावत है कहा था। अब घरेलू अनुसार प्रयोग कहके देख सका जाते है नहीं। हाँ, कि हाँ,
1: तो साथ ही प्रयोग करा जाए।
2: पेन में भी हम लोग सलाद के ज्यादा प्रयोग करा जाते है, शायद नींबू भवा जैसे कागती भवा प्याज भवा ये सब चीज के सेवन ज्यादा करे के चाहिए। और वैसे भी पेट की समस्या अगर लागत है कि पेट हल्का बिरोरत है पिरात है तो काला नमक और ताज़ा पानी और नींबू डाल के हम लोग एक गिलास पानी जरूर लिया जाए। नींबू इस सेहत बहुत हम लोगों का फायदेजनक रहा था, कागती एकदम फायदेजनक रहा था, इस सेहत लू से बचावे खातिर तो हमारे कागती पानी के सेवन जरूर करा जाए। और काला नमक से कहा होते कि पाचन शक्ति का वो बचावे कोशिश करते हैं, डकार निकालत है जिसके कारण से उसका प्रयोग करा जाता है। कैसे खाना नुकसाने से ही, खाना नुकसान से कई प्रकार के खाने नुकसान से ये रोग बाहर निकले लागत है। और बुखार आएगा तो अलग बात है, नहीं तो जैसे डकार भवा अपच भवा खाना नहीं पचा उल्टी होत है तो हम लोग नींबू पानी और नमक के प्रयोग करा जाते हैं।
1: हाँ तो साथ ही आप लोग अब मेरे सखी जो बताई ना एक हमका अच्छा भी लगा बात कि जैसे अगर लू से बचना चाह जाते हैं, अगर आपका बाहर काम है धूप में अब क्या करा जाए, काम रहा तो बाहर निकले के पड़ता है ना सखी, जैसे कि हम लोग तो सबका निकले के पड़ता है ना, तो लू लगे के समय होते हैं 1 बजे से 3 बजे तक रहते हैं, जैसे घाम तेज रहते हैं बता। और
2: मतलब तो हम कार्यक्रम का समय पूरा बताए दिन कि लू लगे एक समय होता है, अभी तो बड़ा उल्टा आप कह रहा था।
1: सखी सुनो ना, हम अपने कार्यक्रम के बारे में थोड़ी ना कही थे ना, हम ये बात कही थे
2: 12 बजे से घाम तेज हो जाता है ना, दोपहर 12 बजे कहा जाता है, तो आप 1 बजे कहे आई क्यों
1: बात। अरे चलो ठीक है, 1 घंटा और बढ़ाई लो, और का 1 घंटा
2: और बढ़ाई, दया कह दियो आप तो समझा के 4 बजे तक घाम
1: बतिया तो सुनी हो पहले। अच्छा 12 बजे रख लो, 12 बजे से 3 बजे तक घाम खूब कड़क रहा था, चटक रहा,
2: 4 बजे तक रहा था,
1: 4 बजे
2: तक हाँ रहा था 4 बजे।
1: चलो 4 बजे 1 घंटा और बढ़ाए दो, और बढ़ाए दो। लेकिन जिसे बाहर निकले पड़ा था नहीं, तो उस वक्त प्याज लेके चले हो आप लोग, हमने मुंह का देखा तो सही। आप कहो ना इससे क्या होते लू से बचे वाला, आप देखो हमका तरीका अच्छा लगा तो हम बताए थे, तो आप तो मेरे के
2: हम का कहे हैं ना, अब आपके हाव भाव देख के हम आपका देखी थे, आपका नवा चीज लाग हुई
1: तो नवा चीज अच्छा लगा हमका का,
2: तो
1: अच्छा
2: हम लगा कहीं वो तो नहीं करे हैं,
1: तो आपके नजर से हमका ही मेरे को लगा था
2: नजर से बोली से आवाज से हर चीज से आप अत्ता समझ ले तो
1: आपका लगा था कि हम जिहाई थे,
2: पूरा कपड़ा उड़ के इसे बांध के अब अगले हफ्ते हम बैठबे
1: नहीं तो सकी, तो बस वही बात है हमारे हमार का कहे मतलब है कि प्यार लेके चला जाए तो लू से बचा जाइए और तुरंत घाम से आए के पानी भी ना पिया जाए, मतलब पानी पिया जाए थोड़ा देर रुक के।
2: हाँ आज इनके एनर्जी कुछ ज्यादा है श्रोता, अभी पानी ना पिया जाए फिर पानी पिया जाए,
1: पानी पिया जाए लेकिन 2 मिनट 5 मिनट रुक के, तुरंत पानी पिया जाए तभी तो लू लग जाइए ना, लग जाइए लगी ना लगी सकी है ना,
2: लाग सकत है
1: लाग सकत
2: लगी ना लगी कसके बता दी, लाग सकत है
1: लाग सकत है। हाँ प्याज तो रही बेकरी साथ माना तो लाग सकत है।
2: हाँ तो पानी ना पियो आप,
1: नहीं
2: नहीं आप तो ये
1: पानी तो दवाई जरूरी है
2: हो, तो कह दो हमका रोग आओ हमरे पास दवाई रखा है आओ हमसे लड़ो हमारे पास दवाई रखा है, आप बातें वही तो ना करो, तो प्याज लाग सकत है कैसे बेबी में तो झोला में तो प्याज है ये मतलब पानी ना पिए
1: नहीं नहीं पानी तो सकी हम ये कहे मतलब है मार घाम खूब चटक घाम से आयो घरे है ना तो तुरंत पानी पी ली हो तो का हुई है,
2: पानी के साथ साथ और भी चीजें हैं जैसे तुरंत एकदम पंखा में कपड़ा ना निकालो, वही बात पहले भी बतावा गया है,
1: पंखा पंखा भी तुरंत ऑन ना करो मतलब खोलो ना पंखा जो है थोड़ा देर 5 मिनट 2 मिनट सुताई के तभी के बाद पानी पियो आराम से, तब कपड़ा भी चेंज करो पसीना सूख जाए, पंखा भी चलाओ कूलर चलाओ एसी हो जो भी हो,
2: एसी हो पंखा कूलर सवार है बात कुछ दूसरे है।
1: अरे बड़ा गर्मी लगा था सखी यही मारे हम अत्ता बढ़िया बढ़िया ढूंढ ढान के गीत सुनाई थे हाँ। तो अत्ता मेहनत ना लगत है
2: हाँ, सुनावत भी हो और बतावत भी हो कि हाँ, हाँ, एसी चाहिए हाँ। कूलर चाहिए पंखा चाहिए, अब वो चाहिए तो एक दो ऑप्शन होगा कि जैसे भी का चाहिए डिमांड हो।
1: अच्छा तो बताओ सखी आपको कैसे
2: ना हो तो क्या करा जाए,
1: ना हो तो बेनिया डोलाओ
2: हाँ बस
1: बेनिया तो जिंदाबाद
2: जाए के बगिया में बैठो,
1: बगिया में बैठो अरे आम के बिरुआ की तरह बैठो हाँ। और आम जो पत्ता हली है तो अरे आम के बिरुआ का है तमाम तो बिरुआ रहा थे।
2: अच्छा
1: हाँ
2: बाद में सोचो तो आप
1: जब बिरुवा जब
2: तो ठीक है बगीचा में जाइए तो तमाम के अंतिम अंतिम में भी हम लोग पहुंचे लगा गया है सखी।
1: अरे हाँ सखी टाइम के तो कुछ वही नहीं
2: हाँ, आज टाइम के आपका वही नहीं है, आज आपके बैटरी चार्ज है हम कुछ डाउन हन लागत है, अब सोची थे जमा
1: करी एक तो दूसरा नहीं
2: अब घाम से आए रहे तो थोड़ा वो रहे लेकिन गाना सुनाई सुनाई के और हमका आज निराशपन आवा है कि कूलर लाओ पंखा लाओ बेना लाओ, अगर ना ला पाओ तो ये तो आज झगड़े कैले हैं,
1: बेनिया डोलाओ
2: सुना जात हो
1: बेनिया डोलाओ
2: सारे घर में ही पूरा सबके यहाँ खिलाफ कह दिए ने कि आज कूलर चाहिए पंखा चाहिए ना लियो तो अब उल्टे बेना डोलाओ बैठा के
1: हाँ, और का बेना डोलाओ
2: हाँ।
1: भाई खाना कोई बनावे महिला लोग की बेना डोला हाँ,
2: आज बात कुछ है तो ठीक है आप लोग ऐसे ने लू से बचे खातिर अपने आप का बचाव वाला चीज जो हम लोग अपने घर में कही सका जाता है कि जैसे घाम से बचा जाए, थोड़ा घाम से बच के काम करा जाए, कपड़ा पूरा बाही के सूती के पहना जाए और के साथ साथ पानी की मात्रा ज़्यादा करा जाए, रसीला चीज खाना ज़्यादा प्रयोग करा जाए और खाना में जैसे आपका समस्या भवा कि उल्टी लागत है या मूड ज़्यादा पिरात है तो नींबू पानी और के प्रयोग करा जाए, ठंडा मतलब ठंडा पानी माने ताज़ा पानी
1: हाँ।
2: ताज़ा पानी के प्रयोग करा जाए, ज़्यादा बुखार है ज़्यादा हाथ पैर में तापक्रम ज़्यादा है तो थोड़ा बर्फ़ से सेकाई भी करा जाए, इके बहुत सी चीज़ें हैं कि हम लोगों का ज़्यादा चक्कर लाग घाम में चला गया तो जाके कहूँ नीरे बिरुआ है तो बिरुआ के नीचे थोड़ी देर बैठा जाए, कहा से तापक्रम लगातार चले से ही हम लोगों की तबीयत खराब हो सकता
1: हाँ।
2: है
1: तो सखी
2: हाँ
1: अब चला जाए हाँ। व्यापारी विश्राम की तरफ फिर आए के विदा ले पड़ी
2: अच्छा ठीक है सखी चला जाए व्यापारी विश्राम की तरफ।
3: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाख को बीमा तिरेको संपूर्ण प्रीमियम फिर्ता सूर्य ज्योति सही प्लान
4: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स जीवन को लागि।
5: ओहो हामी बिरामी भएपछि कहाँ जाने त
6: तपाईलाई थाहा छैन नेपालगञ्जको शीतलनगर 10 त्रिशक्ति मन्दिरको सामुन्ने खुलेको छ नि चौधरी सरकार बक्स पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक प्राली
5: हो र त्यहाँ सुविधाहरू के रहेछ त?
6: एउटै छातामुनि विभिन्न सेवाहरू रहेको छ नि, जस्तै डाक्टर संकेत रिसाल फिजिसियन एवं पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ, डाक्टर उर्मिला पराजुली रिसाल स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डाक्टर आरके झा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ, डाक्टर दिनेश कुमार चौधरी नाक कान घाँटी एवं टाउको रोग विशेषज्ञ, प्रेक्षा सिंह चौधरी एकुपंक्चरिस्ट। एकुपंक्चर पद्धतिबाट ठिक हुने रोगहरू हात खुट्टा नचल्ने, मुख बाङ्गो हुने, बाथरोग, ढाड दुख्ने, मूर्छा पर्ने र नसा सम्बन्धी सबै रोगहरूको उपचार गरिन्छ।
5: अनकल सेवाहरू:
6: नवजात तथा बालरोग विशेषज्ञ, मृगौला तथा मूत्र रोग विशेषज्ञ, हाड जोड्नी, अर्थोपेडिक सर्जन तथा नसा रोग विशेषज्ञ। प्याकेजमा हेल्थ जाँच गर्ने सुविधा पनि रहेको छ। प्याथोलोजी, भिडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, कानको सुन्ने शक्ति थाहा पाउनको लागि अडियोग्रामका साथै रगत, दिशा पिसाब, खकार, थाइराइड, बायोप्सी, कल्चरका एवं सबै प्रकारको हार्मोनको जाँच गरिनुको साथै औषधि सुविधा पनि उपलब्ध रहेको छ।
7: डाक्टर भेट्ने समय: बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म, दिउँसो 3:30 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म। डाक्टर दिनेश कुमार चौधरी नाक कान घाँटी एवं टाउको रोग विशेषज्ञ, बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म, दिउँसो 3:30 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म, शनिबार बिहान 8:30 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म।
6: सम्पर्क फोन नम्बर 081-533-719, 98-480-22-229 र 98-605-22-229।

0: खुल्यो खुल्यो खुल्यो
1: तपाईको आफ्नै शहर कोहलपुरमा टीवीएस शोरूम खुल्यो।
0: स्टाइल, पावर र भरोसा अब एकै ठाउँमा
1: कोहलपुरमै पाइन्छ। टीवीएस का नयाँ बाइक र स्कूटर, दमदार परफर्मेन्स र उत्कृष्ट माइलेज का साथ सेल्स सर्भिस र स्पेयर्स, सबै सुविधा एउटै छानामुनि, साथमा फाइनान्सको सुविधा पनि।
0: आजै आउनुहोस् नेपाल अटो पार्ट्स एन्ड सप्लायर्स, कोहलपुर 11 बाँकी।
1: हजुर, नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसाको यात्रा। सम्पर्क नम्बर 98125 26 711 र 98 20 18 37 86। नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसाको यात्रा।
2: हाय रे दिदिया, हमार टिहुनी बहुत पीरा थे, बहुत दवाई कराए डाले, ना ही ठीक आते।
3: सुनो बहनी, खुशी के खबर,
4: अब ऑपरेशन के खातिर काठमांडू और लखनऊ दौरे धूपे न पड़ी। पश्चिम नेपाल में यह एकमात्र आधुनिक अल्ट्रासाउंड के सुविधा है।
3: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ मूत्र और दिल गुर्दा रोग के सब ऑपरेशन दूरबीन प्रविधि के द्वारा किया जाता है। और वहाँ पेट संबंधी सब मेर के दवाई, पित्त थैली के पथरी, अपेंडिस, हार्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, फीसर भगंदर जस पुरुष लोगन में यहाँ लिंग, ब्रे और अंडकोश और मर्दांगनी के कमी हुए समस्या साथेन कैंसर संबंधी सब दवाई ऑपरेशन किया जात है। और जानत हो, हाथ गोड़ करिहाव, रीढ़, टिहुनी पिराप, झंझनाहट हो, नस पिराप, झमझमाप, हड्डी टूट फूट भवा है तो दवाई और ऑपरेशन के साथेन प्लास्टर बांधा जात है। महिला लोगन में यहाँ सफेद पानी बहाव, महीनावारी में यहाँ गड़बड़ी, निसंतानता, गर्भवती लोगन के नियमित चेक जांच, बच्चेदानी और स्त्री रोगन के सब मेर के दवाई के साथेन ऑपरेशन किया जात है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता, कंसल्टेंट सर्जन, यूरो सर्जन, जनरल कैंसर, मूत्र रोग तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राहुल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, हार्ट जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ।
3: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, सुर्खेत रोड, आदर्श नगर, नेपालगंज 10 बांके, वन कार्यालय के नेरेन, पेट्रोल पंप के पछुए। संपर्क नंबर 081-5-31000।
6: अपन स्वास्थ्य के ख्याल रखब सच्चा आत्मविश्वास होए, वही से तो नेपाल परिवार नियोजन संघ बाके शाखा विगत लंबा समय से आप लोगन के सेवा में यहाँ समर्पित है।
7: हमरे यहाँ पूर्ण गोपनीयता के साथेन गर्भपतन, परिवार नियोजन के साधन, बच्चेदानी के मुंह और स्तन कैंसर के परीक्षण और यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी परामर्श सेवा उपलब्ध है।
6: विशेष सुविधा,
7: अब हरेक इतवार के दोपहरे 3 बजे से 5 बजे तक स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदेश आचार्य के द्वारा विशेष परामर्श और उपचारों भी पावा जाए।
5: देर न कीन जाए, आज स्वास्थ्य परामर्श लीन जाए। पता नेपालगंज उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 9, रामलीला रोड, नापी शाखा के अगारी। फोन नंबर 081-5-30-598।

0: तो सखी,
1: हाँ सखी,
0: आए भी गए ना, अब चला भी जाए।
1: हाँ टाइम के कुछ
0: पता नहीं, निराश ना हो,
1: और आपका एनर्जी आएगा जाए खातिर। तो ठीक है, और का अगले हफ्ते फिर एनर्जी के साथ मावा जी और का।
0: तो ठीक है श्रोता, आप लोग भी ऐसे अपने काम में व्यस्त रहा जाए, कार्यक्रम सुनते रहा जाए, और रेडियो कृष्ण सारी FM भी सुनते रहा जाए। तो आज के खातिर आप लोग से हम लोग का विदा लेक समय आए गवा है, 3 बजे गवा है। तो जरूर ऐसे कार्यक्रम सुनते रहा जाए, और आज के खातिर बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का। तो ऐसे कार्यक्रम आप लोग हर एक हफ्ता ये कार्यक्रम घर अंगना सुनते रहा जाए, हमारे लोग के जो बतावागा शेयर करा जाए, उसका भी लाइक कमेंट जरूर करा जाए, अपन प्रतिक्रिया जरूर दिया जाए। यही कहते तो हमारे प्राविधिक मामा सखी आज बहुत ज़्यादा गर्मी के ऊपर जो गीत संगीत सुनाई नहीं, तो बेना कूलर ये सब खातिर अगर आपका कोई परेशानी हो तो उसके लिए भी आप बतावा जाए कि गीतन से तो कोई परेशानी आप लोग घर में ना
1: भवा
0: हो, तो जरूर शेयर करा जाए। तो आपका भी हमारे सखीन का भी बहुत बहुत धन्यवाद है ये संगीत खातिर। हाँ सखी,
1: हाँ ठीक है, धन्यवाद है आपका भी, सब लोगों का भी सुने खातिर।
0: हाँ अब हाँ। सखी हमार डिमांड रखी ने, तो आप लोग घर में डिमांड आ सकत है, एक मारे कहा है, लेकिन कोई बात नहीं, एक हफ्ता में आप अपन समस्या घर में जो भी हुए हम लोग का जरूर बतावा जाए।
1: अच्छा।
0: तो ये कहते हैं अपन लोग विदा लिया जाए।
1: हाँ।
0: नमस्कार,
1: नमस्कार,
0: राम राम, राम, राम, राम, राम
1: शुभ दिन।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 3 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतान प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।
1: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस्ट सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा है, कहाँ जाए तो ठीक रही, तनी बताए दो हमका।
2: सुना जाए आपका, हम बताई थे आप नेपालगंज में यहाँ अपने घर के खातिर ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब प्राली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ ऑर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज, जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथन टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथन बनावा भी जात है।
1: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथन आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जात है।
2: एक दफे सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बांके संपर्क नंबर 9844885375 और 9808254037।
3: नींद नाए हमको हाए जग
1: सोता है। व्यवसायिक कृषि पद्धति अपनावे के खातिर कृषक वर्ग के यहाँ कृषि व्यवसायिक प्रवर्धन सहयोग और तालीम केंद्र खजुरा बाके के विशेष अनुरोध।
2: कृषि क्षेत्र में यहाँ व्यवसायिक पद्धति अपनाए के आय मूलक व्यवसाय मार्फत आत्मनिर्भर बना जाए और बनावा जाए। कृषि पेशा के यहाँ मर्यादित बनावे उद्यमशील विकास कई के रोजगारी सृजना करा जाए, करावा जाए। कृषि व्यवसाय में यहाँ तुलनात्मक विश्लेषण कई के आमदनी मूलक व्यवसाय छनौट करा जाए। खेती व्यवसाय के नियमित अभिलेख रख के विश्लेषण करक बानी बैठावा जाए। बाजार देख के मात्र उत्पादन योजना बनावा जाए। व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तैयार कई के कार्यान्वयन करा जाए। सफल उद्यमी बनो, व्यवसाय के यहाँ निरंतरता देव, विस्तार करा जाए, करावा जाए। कृषि प्रावधिक विज्ञ लोगन से नियमित सरसलाह और सुझाव लीन जाए और वही अनुसार व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करा जाए, करावा जाए।
1: अकेले प्रयास से कृषि क्षेत्र में यहाँ व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में यहाँ कार्यान्वयन न कर सके कारण से हम लोग निजी और सरकारी सब सरोकार वाला लोग एकजुट हो के अपन अपन भूमिका निर्वाह संबंध में सहकार और प्रयास करा जाए, करावा जाए।
2: तब आवश्यक सरसलाह और जानकारी के खातिर नेरे के संघीय तथा प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा उपलब्ध करावे वाले कार्यालय, केंद्र, प्रयोगशाला, निर्देशनालय और स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में यहाँ संपर्क रखे खातिर अनुरोध करा जात है। कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तथा तालीम केंद्र खजुरा बांके।
1: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
4: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाओ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगन के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगन के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसन मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
1: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो?
4: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 9840206697 9850823697 और 9804483697।
5: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
6: भैया बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं। कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
4: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे। बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए। वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होते है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
6: सही, वहाँ का सेवा मिलत है तो भैया?
4: सुनो, हुआ औरतन के बांझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यो गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
7: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नामदरता कह के तह दिल हुआ जाए।
4: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ। संपर्क नंबर 97649 11786, 98224 92377। सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।
8: Back to back. Back to back.
9: In this song on.
8: Stay tuned.

0: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बीमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता, सूर्य ज्योति सही प्लान,
1: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवनको लागि।
2: होइन कौशल्या मेमोरियल अस्पताल यही थियो त।
3: ओहो बाजे, अब उता आएन, ठ्याक्कै यता हेर्नुहोस् त पूर्वपट्टि।
4: हाम्रा सेवाहरू: इन्टरनल मेडिसिन तथा फ्यामिली फिजिसियन सेवा, हार्ट जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ सेवा, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ सेवा, प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा, नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ सेवा, दाँत बङ्गारा तथा मुख सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा, एकुपंक्चर तथा फिजियोथेरापी सेवा, 24 घण्टा रोड एक्सिडेन्ट इमर्जेन्सी सेवा, 24 घण्टा ल्याब एक्सरे र ख वर्गको एम्बुलेन्स सेवा, एयर कन्डिसन इमर्जेन्सी वार्ड, स्ट्यान्डर्ड वार्ड तथा क्याबिनहरू।
5: हजुर, कौशल्या मेमोरियल अस्पताल, कोहलपुर नगरपालिका, वडा नम्बर 9, हलदारपुर बाँके। सम्पर्क नम्बर 0184140007 र 98482639।
6: हाय रे दिदिया, हमार टिहुनी बहुत पीरा थे, बहुत दवाई कराए डाले, नाई ठीक थे।
7: सुनो बहनी, खुशी के खबर,
8: अब ऑपरेशन के खातिर काठमांडू और लखनऊ दौरे धूपे न पड़ी। पश्चिम नेपाल में यह एकमात्र आधुनिक अल्ट्रासाउंड के सुविधा है।
7: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में यह मूत्र और दिल गुर्दा रोग के सब ऑपरेशन दूरबीन प्रविधि के द्वारा किया जाता है। और वहाँ पेट संबंधी सब मेर के दवाई, पित्त थैली के पथरी, अपेंडिस, हार्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, फीसर भगंदर जस पुरुष लोगन में यहाँ लिंग, ब्रिये और अंडकोश और मर्दांगनी की कमी हुए समस्या साथ हैं, कैंसर संबंधी सब दवाई ऑपरेशन किया जात है। और जानत हो, हाथ गोड़ करिहाव, रीढ़, टिहुनी पिराप, झंझनाहट हो, नस पिराप, झमझमाव, हड्डी टूट फूट भवा है तो दवाई और ऑपरेशन के साथ हैं प्लास्टर बांधा जात है। महिला लोगन में यहाँ सफेद पानी बहाव, महीनावारी में यहाँ गड़बड़ी, निसंतानता, गर्भवती लोगन के नियमित चेक जांच, बच्चेदानी और स्त्री रोगन के सब मेर के दवाई के साथ हैं ऑपरेशन किया जात है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
9: डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता, कंसल्टेंट सर्जन, यूरो सर्जन, जनरल कैंसर, मूत्ररोग तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राहुल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, हार्ट जोड़नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ।
7: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, सुर्खेत रोड, आदर्श नगर, नेपालगंज 10, बाँके। वन कार्यालय के नेरेन, पेट्रोल पंप के पछुए। संपर्क नंबर 0815-31000।
10: आमाको उपचार गरौँ भनेको कहाँ जाने होला?
11: कान्ति आरोग्य अस्पताल छँदै छ नि, पश्चिम नेपालकै अनुभवी र उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सकद्वारा विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि यही उपलब्ध छ।
10: हो र, यो अस्पतालमा के सुविधा छन् नि?
11: 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपिडी सेवा, दूरबीन तथा लेजर प्रविधिबाट शल्यक्रिया, जलेको घाउको उपचार गरिनुका साथै एनआइसियु, पिआइसियु, आइसियु, हाइटेक अपरेसन थिएटर र सुरक्षित प्रसूति सेवा पनि यही उपलब्ध छन्। अझ यहाँ त बालबालिका तथा नवजात शिशुहरूको सामान्यदेखि जटिल सबै रोगहरूको सबै किसिमको उपचार गरिन्छ नि।
10: त्यसो भए आमालाई लगेर आजै जानु पर्यो।
11: कान्ति आरोग्य अस्पताल, सुर्खेत रोड, नेपालगंज, सबै किसिमका उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एकै छाना मुनि।
10: सम्पर्क नम्बर 0185537717। हजुरबालाई लामो समयदेखि कानको समस्या छ, नेपालगञ्जमा भरपर्दो र विश्वासिलो अस्पतालका लागि कहाँ जाने होला?
11: ए, त्यसो भए त चिन्तै लिनु पर्दैन नि, नेपालगञ्जमै रहेको बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेवा केन्द्र छँदैछ नि। यहाँ त अनुभवी विशेषज्ञ तथा वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिकबाट हरेक दिन कान परीक्षण गरिन्छ। त्यति मात्र कहाँ हो र, यहाँ त लामो समयदेखि कान पाकिरहने जीर्ण रोग, काने ढुसी, कान चिलाउने, कान कम सुन्ने, कान डम्माउने बिरामीहरूको उपचार तथा परामर्श र लामो समयदेखि कान पाकिरहँदा कानको जालीमा प्वाल परेको, कान हड्डी खाने रोगको शल्यक्रिया अपरेसनबाट उपचार गरिन्छ। साथै कान कम सुन्ने बिरामीहरूका लागि कानमा लगाउने सस्तोदेखि महँगोसम्मका विभिन्न मोडेलका कानका मेसिन, हियरिङ एड बिरामीहरूको चाहना अनुसार उपलब्ध गराइन्छ। बिटिई, सिआइसी, आरआइसी जस्ता मेसिनहरू पनि यही उपलब्ध छन्।
10: ए, त्यसो भए हजुरबालाई त्यहाँ लगेर उपचार गराउँदा स्पष्ट सुन्न सक्नु होला त?
11: अवश्य, समयमा उपचार गरेपछि धेरै सुधार सम्भव हुन्छ।
10: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेवा केन्द्र,
11: नेपालगंज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक सामुन्ने राप्ती रोड बाके संचालक पूरण चौधरी
10: सम्पर्क नम्बर 9848206697 9858223697 र 9800143697
11: बहिरोपण निवारण कार्यक्रममा सहभागी हौ नियमित कानको जाँच गरौँ
5: Back to back. Back to back.
12: In this song on
5: Stay tuned.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
2: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बीमा तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता सूर्य ज्योति सही प्लान
3: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स जीवनको लागि

वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 9805523568।

0: मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 98025 32568।
1: यो कृष्ण सार एफएम
2: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ।
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।
3: यो कृष्ण सार एफएम
4: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 7 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज

0: सुरक्षित पुनर्स्थापनाको सुनिश्चित नगरी कुनै पनि परिवारलाई होल्डिङ सेन्टरमा बाट नहटाउन माग गर्दै होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासीहरूले आज काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा आयोगले जेन्जी आन्दोलनको प्रतिवेदन र गरेका सम्बन्धित सबै कागजातहरू उपलब्ध गराउन माग गर्दै निवेदन दर्ता गर्नुभएको छ। उच्च शिक्षामा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या पछिल्ला वर्षमा निरन्तर बढ्दै गएको छ। युक्रेनले रुसभित्र गरिरहेको निरन्तर ड्रोन आक्रमण र अमेरिकाले अनुकूल शर्तमा युद्ध अन्त्य गराउन दिएको आश्वासन पूरा नगरेको भन्दै रुसी कट्टरपन्थीहरू आक्रोशित भएका छन् र फिफा विश्वकप 2026 अन्तर्गत भोलि बिहान समूह चरणको अन्तिम खेलहरू हुँदैछन्। हवस् त, आजलाई साझा खबरको समय सकियो। प्राविधिक साथी राजेन्द्र रिजाललाई धन्यवाद। भोलि असार 14 गते बिहान 6 बजेको साझा खबरमा फेरि भेटौँला। अहिलेलाई म दीपक आचार्य पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।
1: यो कृष्ण सार एफएम
2: 94 मेगाहर्ज, कृष्ण सार जत्तिकै तेज।
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक, टाइम चेक, अहिले ठीक 8 बजेको छ।
4: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.
1: Yo Krishna Sar FM
2: 94 megahertz. Krishna Sar jatti ke tez.
5: सर्पदंश अथवा साँपनक कटाइमसे बाँच हो साँपनक कटाइमसे हुइसेक्ना मानवीय एवं शारीरिक क्षतिक विषयमा आम सञ्चार अन्तर्क्रियात्मक रेडियो केन्द्रित अभियान जीवन सन्देश। नमस्कार। सर्पदंश से हुइसेक्ना मानवीय एवं शारीरिक क्षति विरुद्धक जनचेतना जगेना उद्देश्य लेलक अन्तर्क्रियात्मक रेडियो कार्यक्रम लहर जीवन सन्देशमा अपना स्वागत बा मै पुष्पा। रेडियो कार्यक्रम जीवन सन्देशका आज श्रृङ्खलामा हाम्रो विज्ञ व्यक्ति हुकनसे अन्तर्क्रियात्मक छलफल गर्ने बाटी। आज यी कार्यक्रममा हाम्रो वातावरणमा साँपनको महत्व, बदलती गैलक पर्यावरणले साँप जातिनमा पर्लक असर, नेपाल सरकार वन मन्त्रालय साँप सम्बन्धी करलक कामक विवरणका सँग स्थानीय सरकार सर्पदंश कार्यक्रम कसिक सञ्चालन करलबा कना विषयमा चर्चा गर्ने बाटी। मानव साँपक बीचक द्वन्द काकर हुइठा वाकर न्यूनीकरण कसिक करना ऊ यी दुई बीचक सह अस्तित्व कसिक कायम करना कना विषयमा फे बातचित गर्ने बाटी। ओ याकरसँग सर्पदंशक रोकथाम कलाक रोटरी जनचेतनामूलक अभियान सहित और बातचित फे गर्ने बाटी। आई कार्यक्रमको सुरुवात गरी हाम्रो विज्ञ व्यक्तित्व हुकनक पूरा परिचय मसे।
6: मेरो नाम चाहिँ सबन पाठक हो। म वन तथा भू संरक्षण विभागमा चाहिँ वन अधिकृतको रूपमा काम गर्छु। मैले काम गरेको चाहिँ 30 वर्षभन्दा नै माथि भइसक्यो।
7: मेरो नाम शशाङ्क पौडेल हो। म डब्लुएलएफ नेपालमा काम गर्छु। खास गरी मैले काम गर्ने भनेको चाहिँ वन्यजन्तु सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान र मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वको विषयहरूमा खास गरी काम गर्छु।
8: हजुर नमस्कार, मेरो नाम निर्मल रिजाल, म रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनको निवर्तमान अध्यक्ष। अहिले म युनिभर्सिटीमा पढाउनुका साथसाथै म सोसल एक्टिभिटिजहरूमा पनि धेरै रहन्छु।
5: नमस्ते, अपनाहन स्वागत बा यी रेडियो कार्यक्रममा। कार्यक्रमको शुरूआतमा मै शशाङ्क जिहन पुछ चहटु। डब्लुडब्लुएफ नेपाल साँपनको संरक्षण गर्न काममा कसिको भूमिका निर्वाह गरसेकी, स्पेसल्ली रोटरी से याकर कसिको साझेदारी गरसेक जाई, अपनाहन नेपालका सर्वदंशक विषयमा थाहा जो बा याकर विषयमा डान्से बटाटिन।
7: डब्लुडब्लुएफ नेपालले चाहिँ लामो समय
9: डब्लुडब्लुएफ नेपाल नम्मा समस्या तराई भूपरिधि कार्यक्रम अन्तर्गत बागमती लड्यासे पश्चिम कञ्चनपुरसम्म हाम्रो संरक्षित क्षेत्र हो। संरक्षित क्षेत्र से बाहर फे वन्यजन्तु हुकन संरक्षण और अध्ययन अनुसंधान का काम समुदाय से मिलकर ढ्यूर मेरे काम करती बाटी। यही में खास कह हमार बड़ा प्रजाति हुकन संरक्षण करना कार्यक्रम होले से फे और ढ्यूर कार्यक्रम ले करबेर और छोट प्रजाति और सरीसृप जस्त आज सापन का विषय में बाट बुटी बाटी वही में फे पुगल बा। खास काम वन्यजंतु ने बासस्थान व्यवस्थापन का बाट हुईल वो वन्यजंतु हुकन मन रिस उठेना मेरे काम करना द्वंद्व क्रम में मार देना जैसे काम कम करकला बैठा वकर संग संग खोलवा नरवा सिमसार क्षेत्र हन सरसफाई गर्न ऊ स्वस्थ रूपमा आफ्नो काम गरकना हिसाबले हाम्रा ढ्युर काम कटिबाटी ऊ करबेर उहीले बडा प्रजाति हुकन काम हुइलसे फे और छोटी प्रजाति हुकन फे फाइदा पुग्छन् ऊ वातावरण मजा हुइबेर अब अपना जोन कली रोटरी से मिल्ख सर्पदंश वा साँप संरक्षण गर्नमा कसिन काम खर्च जाए कैख कहबेर वाकरला काम गर्न हाम्रो कहबेर फे हाम्रो ढ्युर काम गर्नक कारणले करबेर रोटरी मसी कटिरहल कार्यक्रम हो हाम्रो कटिरहल कार्यक्रम हाम्रो मिल्ना ठाउँ सम जोर खन सँग लेख जैना हकल से जस्त सर्पदंश कम करक लाग सापन से बचक लाग डिहपना सन्देश वा हाम्रो और जिनवारन का लाग कटिबाटी तर उहीमा ऊ पाट हन फे जोर नहो कल से उहीमा जोर जाई असिक उहीमा सँग मिल्ख काम गर्छ दिन सम्भावना ढ्युर बा
7: मिलेर काम गर्न सकिने अवसरहरू चाहिँ प्रशस्त मात्रामा छन्।
8: सबनम म्याडमलाई मेरो प्रश्न, हाम्रो धार्मिक आस्था अनुसार पनि सर्पको
10: सबनम म्याडम भन मोर प्रश्न, धार्मिक आस्था अनुसार फे सपनक महत्व बाटिन कर्न बाद पुरान कार्यक्रममा फे गर्ली तर प्राकृतिक रूपमा यी जौन इको सिस्टम पर्यावरणीय चक्र कठिन हाम्रा वहीमा सपनक स्थान कहाँ बा काक्र हिंक र महत्वपूर्णबाट एक ठो बाट द्वासर अपनेक मन्त्रलाई ऊ विषयमा काकैसिन काम खर्ल बा अपनेक दान्से अनुभव सुना दिन।
6: खास गरेर यो सर्पको लागि इको सिस्टममा चाहिँ असाध्यै धेरै महत्व,
11: खास गरी सापनको इको सिस्टममा एकदम ठुर महत्व रहल बाटन। काक्र कि मु सशक प्रजाति वाकर आहारा हुइटस ओ हिहन ऊ खैठा ओ ऊ अपना फे और जहनका आहारा बन्ठाई ऊ कारणले यी दोहोरो भूमिका खेल्ती भाई उहिले करबेर इको सिस्टममा साप मास्केल कलसी मानव जाति फे मास जाइसक्छ कन्ना बाद यथार्थ हो। इको सिस्टमका बाट ढ्युर बा ऊ बाट बटोइलसी इको सिस्टममा यी महत्व ढ्युर महत्व रख्ठा जेहीले करबेर मानव अस्तित्व यही मजो अरेल बाकी कनास हो। काकर कि साप मास जैल कलसे मनै फे मास जही ओह ओर्से हिंकनक महत्व बाटन। अब अट्रा महत्व हुइलक सापन वन मन्त्रालय कसिक हेर्ती बा कना अपनक प्रश्नमा अवश्य वन मन्त्रालय सापनका विषयमा छुट्टकौनो कार्यक्रम निठल्ल हो। जस्त वन्य जन्तु सम्बन्धी मेरमिरिक तालिम हुइथा ओसिन तालिममा हाम्रो सापनका विषयमा पाँच छ ठोक कक्षा ठर्थी। हाम्रो ग्रामीण समाजमा जाखट कल निहुटी तर सबसे पहिला कर्मचारीका क्षमता काकर कि कर्मचारी हुँक्र थाहा पहिला सिकेल गाउँ समुदायमा वाकर सन्देश जैना हो। उद्देश्यले हाम्रो सबसे पहिला कर्मचारी तालिम डेनावर लागल हुँटी तर हमार्थे वन मन्त्रालय थिए सर्प विशेषज्ञ नि हुइट। हाम्रो सर्प विशेषज्ञ जे पिएचडी कर्तीबाट सापनका विषयमा या गाउँ घरमा फे कटरापय यी सम्पवा जौन तालिमका लागि हाम्रो प्रयोग गर्थे जौन चाहिँ फिल्डमा लैजाख देखैना अवस्थामा यी सम्पवा कसिन हो यी क्षेत्रमा कसिन कसिन साँप ढ्युर देख पर्थ हाम्रो चाहिँ कसिक सापन हाम्रा कसैको बस्ना अथवा सपहान मही खटरा हुइटाकना महसुस नगर अथवा हाम्रो बस्ना हो ओहि कसैको बची नहोकना सिकाइक लाग हाम्रो यी तालिम फे धर्थे ओ आवक परिवेक्षमा हाम्रो का महसुस गर्दी बाटी कलसे सापन बचाई प्रथा कैख वाकर लाग सक्कु प्रदेशमा तालिम ठैख तालिम दिह प्रथा कना हाम्रो मानस पटलमा पैसाकल बा तर आभनसम सापनका लाग सरकारका आधिकारिक बजेट किताब रेड बुकमा चाहिँ धर निसेक लहुटी
10: उकले संघीय प्रदेश लेभल के कौनो फे बजेटमा परे निसेकल हो।
6: अहिलेसम्म चाहिँ सर्पको कार्यक्रम पर
11: आवश्यक साँप सम्बन्धी कार्यक्रम पर निसेकल हो। विपट ऐना सम्बन्धी बराबर बाट पर्था काकर कि एक त बजेट फे दिन प्रतिदिन कम हुइटी गेल बा नेपाल सरकारका औरो बाट बराबर जिनवार हुकन बचाएक लाग बाघ हुइल हात्ती गैडा हुकन से कसिक बच्ना ओ हुकन कसिक बचैना कना विषयमा पैसा खर्च गर निसेकल हुइटी कलसे साँप छैहामा परल बाकी कह परे काकर कि हमार्थे उह अनुसारको बजेट कम हुइटी गइलक नेपाल सरकारका थिए बजेट कम भएको वन मन्त्रालयमा बजेट कम रठा उहिले करबेर और मन्त्रालय कहबेर वन मन्त्रालय त वातावरण हेर्न मन्त्रालय हो जहाँ मनका सास फेर्नासी लेख मनैया जन्मनासी मुनासँग सक्कु बाट वातावरण से सम्बन्ध रठा कना बाट थाहा हुइटी हुइटी फे वन मन्त्रालयका आवश्यकता निहोकिका कना सुइटा सरकार फे हिमा स्वाच पर्ना हो कना मही हन्न लग्था मही मन्त्रालय बैठक व्यक्तिगत रूपमा महसुस गर्थु अलसी नेपाल सरकार फे यी बाटका महसुस गर पर्था।
5: यहाँ ओकरा दुनु जहन प्रश्न जस्ट अपना ओकरा मेर मेरा कामक सिलसिलामा फिल्ड जैठी भ्रमणमा जैठी उहाँ गैल ब्यालामा अपना ओकरा का देख्थी उहाँ गैलक ब्यालामा देखलक अचम्म लगती चाख लगती कुछु बाकालाई से सुना दिन ओ खास कै शशाङ्क जी बदलती गैलक वातावरणले सापनका पारिस्थितिक प्रणाली हन कसिन असर पर्ला बा याकर विषयमा जना दिन।
7: म चाहिँ केही समय अगाडि चाहिँ नवलपरासी नवलपुर
9: पहिले मै अपना पहिला प्रश्न बाटबाट हेटु मै को समय आग नवलपरासी आवक नवलपुर कहिना उ साइटमा जाइबेर मै डगरीमा न्याङठिर नहुँ त उहाँ जग कारोबार गर्न भने किन्नाफे बेच्नाफे गर्न भने उहाँ चौक पसलमा रह उहाँ चिया बिख बैठल बेलामा जग्गा किन आइल मनिया जग्गा किन खोज्ति रह उहाँसँग आइल मनिया जिन किनी कैखा कटी रह उहाँ बाट बुझाबेर औ रसकको बाट ठिक रहन तर उहाँ सबसे बडा बाट कहाँ रहन कलसे यहाँ एकदम ठ्युर साप लग्छ उहाँ यहाँ बैठनी हुइट कना बाट रहन मनिनक छाराकै ऐना बाटक लाग फे प्रभाव पनारेछन् कि अचम्म लागल महिना सापनको कारणले फे मनिनको निर्णय प्रभावको प्रथा कना मही लागल दोस्रोमै उहाँको अगुवा पुरान मनिन फे पुस्नु म असीको असी नसिन बाट सुन्नु कैख बटुनु त उहाँको कल हाम्रो नारायणी लड्डे किनारमा बाटी उपसे लड्डिया भएको ऐठा हाम्रो यहाँ ऐना बेलासम्म लड्डिया चाकर बैठा ऊ बहारमा पुखा आइल साँप ठ्याक्क हाम्रो यहाँ टिर लप्ठ कैख कल ऊ कारणले हाम्रो बेल्टमा ढ्युर साँप हुइल फुइट कैख न उहाँको बटुइल उहाँ पुरान मनिनक असिन धारणा रहेछ ओही हो न इकोलोजिकल्ली साँप कसिक ऐठ कैख हेर्न बाट एक ठो हुई तर परम्परागत ज्ञानको ठजे उहाँको असिन देख महिना उबाट बडा अचम्म लागल हाम्रो एरिया काकर असिन हुई कना बाट उहाँको थाहा रहेछ उबाट मही एकदम चाकलप्टिक लाग
10: पैसिनो कलेसे वहीसे आर्थिकमा फे असर पर्न रहेछ
9: आर्थिक रूपमा फे प्रभाव पर्न रहेछ ऊ एक ठो बाटो होइन दोस्रो बात जलवायु परिवर्तनमा सापनको गतिविधि कसैको असर पठा कलसे काकर कलसे हरपेटो फोना जत्रा फे घसोर लाख निङ्ना टाटो छ्याप अहिलेसे ढ्युर सक्रिय हुना जिनवार भित्र हुकन्ट जलवायु परिवर्तनका सूचकका रूपमा लेठी नै हुकनक जुन पारिस्थितिक क्यालेन्डर जुन बाटन ऊ अनुसार हुकनक क्यालेन्डर फरक पट्टि गेल बा कलसे हुइपर्ना बेलामा से फरक पट्टि गेल बा कलसे ऊ तापक्रमको कारणले कुछ घटना वा कुछ भर्ना भिठा सक्रिय होइन समय नम्मा या छोटी होइन ओसीको हुइटिबा कलसे उहाँ कुछ असर हुइटिबा कना एक ठो मुख्य सूचक हो अब हाम्रो यी बडलटिगेल परिवेशमा त टमरामै लडेक बाट बटुनु तापक्रम ब्रह टिगेल कलसे हिउँ पग्लना भिठा ऊ हुइल कलसे पानी बहना पानी बहरनामा फरक पर्ना हुइल पानी बाह्र कलसे जीव जुवार हुकनक नेङ्ना घुम्न फे बरलना हुइल हुकनक आवश्यकता फे बहरना हुइल हुकनक लड्का जर्मिना समय आँरा सही समयमा फुट्ना निफुट्ना फरक पर्ना भिठा हुकनक संख्या घटना बहरना भिठा कटरापय प्रजातिमा त तापक्रमका कारणले मुसरा बन्न कि मुसरिया बन्न प्रक्रियामा फेर तापक्रमले फरक पठा कटरा तापक्रम हुइल कलसे मुसरवा निक्रण कटरा तापक्रम हुइल कलसे मुसरिया बन्न हुइठा हाम्रा अब जुन सापनको बाट बटुटी बाटी यी त जलवायु परिवर्तन एक ठो सूचक जो मान पर्छ
7: वास्तवमा भन्ने हो भने यो क्लाइमेट चेन्जको त एउटा इन्डिकेटर स्पेसिस नै मान्नु पर्छ
8: र त्यसले अघि पनि भन्नु
10: अपना जाउँ टम्न कली मनै ओ जनावर हुकन बीच डोन्न बढ्न बाट ओसिन कौनो उदाहरण बा प्रत्यक्ष कहाँ कैसिक हुइल रह कौनो उदाहरण देहे सिक्दी
7: यस्तो हुन्छ अब त्यसमा चाहिँ मान्छेले बुझेर त होइन
9: हिमा कसिन मिठा कलसे मनै बुझबुझकट नाही नै मनिनक उपर आक्रमण हुइल मनै अपनिहान असुरक्षित महसुस गर्न कलसे रिस उठ्न आक्रमण गर्न उट स्वाभाविक हुइल जस्तो हाम्रो गाउँठाउँमा जाइबेर जस्तो कहीँ सप्प काटल कलसे उही मर्ना सेफे सप्पु हुन चिन्ह परल कैखन काकर कि बिरो कराए गेलसे डाक्टर हुन देखाइ पर्न हुई कारणले मार्जिना बाट हुइल दसरबाट गाउँठाउँमा घटना घटस्याकल कलसे सप्प एडिक्टिक ओहो हेर्न हेराइ नकारात्मक भएजी ठा उहिल कलसे उही प्रतिकार गर्न कैखन होइन मर्ना उसिन मेरिक ओही होइन इकोलोजिकली भाषामा कहबे प्रतिशोधात्मक हत्या कैखन कति हाम्रा उमेरिक समस्या सापनकोमा ढ्युर बा
7: धेरै नै छ के
8: म्याडमलाई प्रश्न गरे
10: मेडम हन प्रश्न गर्नु उहिनी सँग सम्बन्धित ऊ जौन प्रतिशोधात्मक हत्या कना जौन बा ऊ अपन बचक लाग मर्न खन बाट बाजे ऊ जनचेतनक अभावले फे हुई उहीमा म्याडमका का राई बा हाम्रा जनचेतना कसिक बढाइसिक जै
6: यसमा मैले एउटा सानो कुरा भन्न चाहे जस्तो
11: म यही म एक ठो बात कह चाहटु एक छो मै फिल्ड भिजिटमा जैटिरहन हुँ जैटी जैटी एक ठो सपा डेक परल हुँ सपा डेक परल र डगरीमा एकजना 7-8 वर्षको लड्का फे आफन डाइसी जैटिरहल तब ऊ लड्का आफन डाइसी काकल कलसे हमन काटी टोलका मनै बोलाइ टोलका सक्कु मनै मिल्ख यी सब पहन मारिकै कहल काहेक मतलब का कलसे सपा डेक टिकी मार पर्था कना सोचाइ ऊ लड्कनक दिमागमा बाटिन कलसे उठ हमार सक्कु लड्कनक सोचाइमा बाटिन निट उठ कलसे हाम्रो सुरुवात कहाँ सिकर परल कलसे घरमा सिकर परल यहीँ बचाइ पर्था कै खटरा महसुस त हुइठा आघपन सपा डेकबाट डर लग्ठा का सपा हो बिसाबी कलसे काटी त मुजैबिकना डर लग्ठा काट डारी त फेर बिसाहानी कना सोचोर निजैटी हाम्रो फर्स्ट म त अपना हन बचाइ खोज्थी नि त हाम्रो मर विचारमा विज्ञ हुक्र रहलसे फे रातख देख्ल कलसे डेक्टी किट निचिन्न सेखे नि त वाकर त फुन्का हेर्क वाकर मोटाइ कपार कसिन बाटिस फुची कसिन बाटिस आँखी जीव निक्रैना तरिका हेर्ख सकु चिज हेरही कलसे बल्ल यी सम्प बिखानी हो कै ख कहीँ विज्ञ हुक्र फे एक ठु सामान्य मन्या हो ख हेर्ना हो कलसे साम डेक डरैना ओ हिँड मार जैना स्वाभाविक हो ऊ मानवीय स्वभाव हो मनैया यही मेहन बिखा जानख याकर पृथ्वी जोगैनामा भारी महत्व बाटिन यही मारटु अथवा पर्यावरणीय चक्र बिगार्तु कैखनी हो यी आफन भित्र सियाल आफन प्रतिरक्षा करकलाख हो ओहौर्से यी करा बाटबा लिरौसी फेनी हो भारी करा बाट हो सपा कटिकी कौन कौन मनाइन् त यी एलर्जी हुइटन ऊ उहाँ सपा देख्लसी यहाँ एलर्जी हुइटन डाक्टर साहुकन यी बात थाहा हुइन् धेरमिरिक बाटबा ओहोर्से हमार कौनो ग्रामीण भेकमा साँप माग खैठ अथवा सपा डेप्टिकी मर्थकना नै हो सकु तिन करोड नेपालीको दिमागमा ऊ हो बा रातख अन्धारमा न्याङ्ग बेर नम्माकुल द्याखल डाबल चुस्स कुस गारामा गरल कलसी देउ मही सपा काटल कि कना शङ्का लठा दिमागमा जो हमार ऊ हो बैठल बा एक घरी हेरी डाक्टर उठे पाछ जैबी कह बेर फे उनी मानत आजकल एकदम बिसारी खाल मनेनमा त छोटी कुछ बाट हुइटी कि हार्ट अट्याक हार्ट फेल हुइसक था साँपकना छोटी हो तर मनेनकमा एकदम डर पैदा गर्ना
10: मनै कुछ बिगार कर लग्न कैख ऐन त हो नै त उफे खोज खोज के मै कटम कैख ऐन त नि होइन
7: हामीले यो जुन मानव वन्यजन्तु
9: द्वन्द हाम्रो जुन मानव वन्यजन्तु द्वन्दक बाटबाट भेटे हाम्रो अक्सर द्वन्दकै कठी तर अक्सर कबु कबु काभिठा कलस्य यही न आब हाम्रो सह अस्तित्व वा असमझदारी कना शब्द हान तनि ढिहुर मूलधारमा ल्याउन पर्न आश देव पठा काकर कलस्य द्वन्द कलस्य त द्वन्दमा रहल दुनु पक्षी हान मै द्वन्दमा बाटो कना ठा र ठा तर मानव हो वन्यजन्तु केसबाट वन्यजन्तु हुन त यी द्वन्द हो अथवा यी झगडा हो कना बाट होइन त ठानी र टिन उता आफ्नो आधारभूत आवश्यकता पुरा करकला चरकला खान अन्तिम विकल्प कलक त ऊ आफन प्रतिरक्षा करकलाग आफन जौन हतियार बाटिस उहो प्रयोग करुए हो तर औरो जिनवार हो हमारमा फरक का कलसे हाम्रो कौन निर्णय लेना से पहिला कुछ स्वाच त सिक्ठी जे हो यी मै करम कना ओ कैरना बीच का जो ग्याप बा उ ग्याप में हमरा नाही असीन हो कई खन डांसे सोचली कल से समस्या तक कम कर सक जाए कना आशा लागत महीना वही व्यवहार परिवर्तन का जो बात बा यही ना हमरा एक ठो कमरा का समूह का रूप में नी हेर करना यही ना समूह किटिया करना एक ठो मने या का करना परिवार का करना समुदाय का करना किन ठो लेवल में हमरा सोच ली हो वह अनुसार का संदेश बने लसे वाकर प्रभावकारिता फिर मजा हुई कना आशा लागत महीना
7: मिसेज पनि बनाए भने सायद त्यसको अलिकति पेनिट्रेसन पनि राम्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई
5: अब हाम्रो सुन्ती बाटी सर्पदंश सम्बन्धी अन्तरक्रियात्मक रेडियो कार्यक्रम जीवन सन्देश आज हामीसँग बातचितमा बाट श्री शशांक पौडेल वन मन्त्रालय वन अधिकृत श्री सबनम पाठक तथा रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिडटाउनका पहिलो अध्यक्ष एवं सञ्चारविद डाक्टर निर्मल रिजाल शशांक जी अब तीन ठो लेवल का जोन बाट बटुल लीजिए उही में अपना कोनो संदेश बाट उ तीन लेवल है घर व्यक्ति व समुदाय है
7: व्यक्ति के बुझना पर्यो भने सबै सर्प
9: व्यक्ति चाहिँ कहाँ बुझ परल कलस्य सक्कु साँप बिखा हानेर त सक्कु साँप मारे डाँडा पर्न जरुरी निरहट सबसे पहिला उबाट व्यक्ति बुझल कलस्य सबसे पहिला काम निमिना हुई घर परिवारक मनी फे एक और जन बलगर से फैलाइ परल सक्कुजना यी बाट बुझ परल ओ समाज बन एक ठो मेरिक सर्पदंश सम्बन्धी हाम्रो पूर्व तयारी का बाट घर परिवारमा फे पूर्व तयारी का बाट घर परिवारमा फे हेर्न हो कलस्य हाम्रो विपदका बाट बटुल छि हाम्रो बराबर विपदका बाट बटुल छि तर खास गरी हेर्न हो कलस्य मानव वन्यजन्तु द्वन्द ओ सर्पदंश फे पोइन्ट हिसाबले हेर्न हो कसै यी फेरि डिजास्टर हो नि त क्युमुलेटिभ हिसाबमा हेर्न हो कसै त यी त भारी भयो नि त यी विपक्ष हाम्रो कसरी लड्न हो त कना विषयमा सामुदायिक स्तरमा योजना बनाएकै अथवा के हो न साँप डस्टार कसै का गर्न त कसरी तयारी बा कहाँ जैन कसरी गर्न उबेला स्वयंसेवक खुख के जैन उनीहरूलाई एउटा के जैन केही हेर्न सम्पर्क गर्न गाडी कहाँ बा एम्बुलेन्स कहाँ बा कना मिरिक समुदाय लेभलमा कुछ पूर्व तयारी होइन हो कसै जीवन जोगिन प्रयास सहज रूपमा गर्न सकिन्छ
7: जीवन जोगाउन पनि त्यति हुँदैन
10: रणनीतिक हिसाबले तयार गरिसक्न हो कलेसे याकर सामना सहजै गरिसक जाए कनबाट हन हेरबर मै म्याडम हन पुछे चाहटु अब स्थानीय सरकार हुक्र प्रभावकारी अथवा कही अधिकार के हिसाबले फे उहाँ हुक्र अधिकार दि गैलक अवस्थामा स्थानीय सरकार हुक्रे फे सर्वदंश सम्बन्धी एक ठो मुद्दा उठैन भ्याला हुइलक हो उहाँ हुक्र कर्तीबाट निहुइट अथवा काकर पर्न हो कना आश लागत काकर कलेसे उहाँ जौन रणनीतिक हिसाबले समुदाय स्तरमा संगठित भएका जौन काम कर पर्न बाट बटवैला उकलक सरकार सहयोग गर्न हो
6: यसमा चाहिँ मेरो धारणा चाहिँ के छ भने जस्तो सरकार
11: मरेहीमा कनाकाबा कलसे अब तिन दहको सरकार भने अब यी सर्पदंश सम्बन्धी काम गर पर्ना कलक मुख्य भूमिका चाहिँ स्थानीय सरकारको हो। स्थानीय सरकार जो हेर्न कसीको सापनका कटाइमा से बज्ना सपवा डस दारल कलसी कहाँ जैना टोलमा कहाँ कहाँ ढनाइए उटा वाकर टाइम रहत फे ओट्रा समयसम्म वाकर उपचार गर निषेक गेल कलसे त वाकर ज्यान फे जाइस्याकर बिसाह रहल कलसी ऊ बाट फे बुझाइ परन। सबसे पहिला त पालिकामा नगरको वडामा प्रत्येक वडा बजेट वडामा याकर टोली बनाइ पर्ना जरुरी बा। प्रत्येक वडामा एक ठो टोली बनाख प्राथमिक उपचार कसिक कर्ना लघक उपचार केन्द्र कहाँ बा काटडारल कलसे काकरना कैख एक ठो समिति जो बनाइ पर्ना जरुरी बा। दोस्रो ऊ समिति सरकार से स्थानीय सरकार से यी काम करक लाग हमन वार्षिक रूपमा कतरा पैसा चाहि कैख इस्टिमेट कर परि ऊ इस्टिमेट कैख ऊ पैसा उहाँ ढर्ना। सबसे पहिला त सापन काटे हे निडीह परल ऊ फे मनी हुल डुनु बाट हुई परल। सबसे पहिला वाकर लाग हाम्रा घरक आजर पाजर झपास हुई निडीह हुई तर सकु जहनका घरक अवस्था त बराबर नि रह ऊ बाट वडाका अध्यक्ष हन नगर प्रमुख हन थाहा रहन। ऊ हुइलसे सबसे पहिला त सरसफाइको लागि बजे छुट्याइ परि काकर कलसी उहाँ कुनका सरसफाई गर्न समय फेरि निरन केक्रो छ सात ठुल लड्का रहन केक्रो डाइकेल केक्रो बाबा केल बाटन। ऊ अवस्थामा बिहान चार बजेसी राति एघार बजीसम्म काम गर बेर उहाँकन आपन लड्कन रिझा पका खवाई निसेक्ना डाइन फी बाट ऊ मेरिक अवस्था रहन मनी फी बाट ऊ हवर्से हाम्रो लेभल छुट्याइ परल। ओसैको घरक सरसफाई आफै फे गाउँ घरमा काठीसी खाना रिझाक खैना परिवारबाट उहाँकन काठी कहाँ ढर्ना ऊ कोनोमा कहाँ साम बैठ ऊ कच्ची घरमा त क्वाठा क्वाठा ब्यारहन निरह घरम परल बिला कसिका टुम्ना हो राखा बिला बनगेल कलसे का करना झोल फाङ्का सुटना हुल झोल लगाखा सुट बेर फे पक्की घरमा फेर राखा डेङ्ना साँफीबाट ओसिन ब्याल म कसिन कसिन मेरी प्राथमिक बाद जान परत कैख सकु बाट उहाँकन जानकारी गराइ परत। आभन विशेष कैख उहाँकन छाइ छावन जानकारी दिह परत काकर कलसे डाई बाबन काम कैख डटकर ख आइल रह खा पिख सुट लग्ल कलसे लड्काउ यहाँ कसी कर पर्था उहाँ कसिक कर पर्था कैख लड्का वहाँ अपना है फे तयारी कर लग्ठ अत्रा काम सुरु अवस्थामा कर सेगेल कलसी फे हो जाए एकदम जरुरी बा। स्थानीय सरकारकै कार्यक्रम स्थानीय सरकारको कार्यक्रममा पर पर्ना जरुरी बा। ओ काट स्याकल कलसे अस्पताल त सकु लघ लघनी हो तर प्राथमिक उपचार केन्द्र कहाँ ढन्ना ऊ चाहिँ एकदम जरुरी बा।
10: स्थानीय सरकारके ध्यान पुगाएकला का कर पर्ना जरुरी बा
6: त्यो चाहिँ हामी वडा अध्यक्ष ज्यूहरूसँग
11: स्थानीय सरकारको ध्यान पुगाएकला स्थानीय सरकारको वडा अध्यक्ष ज्यूकनसी मजासे छलफल गर परल। गाउँ घरमा स्थानीय अगुवा हुँक्रो रह उहाँकन फे सहभागी गराइ परल उहीमा वडा वडामा यी कार्यक्रम गर परल। सुरुमा चाहिँ एकदम करा बा वडा वडामा कार्यक्रम कै खेल जैना जरुरी बा नै त कलसे यी सफल गरेना करा बा का कर कि आज हाम्रो कर्ली दोस्रो जारक महिना आइल कलसी सापनको कटाइ कम हुई दोस्रो फे गर्मीको महिना आइल फेर साँप निकलना बेला उहाँ बिस्ता से कही उहोर से हमार करल काम बालुमा पानी दारस ना भए जौन लेभलमा से हाम्रो काम सुरु गर्ल बाटी उही से ऊपर जैटी रह तर नागिरकना हिसाबले हाम्रो काम गर्न जरुरी बा।
10: बजेट नन्न जरुरी बा यही अन औपचारिकता देखेक लाग बजेट फे नन्न जरुरी बा
6: बजेट नै छुट्याउनु जरुरी छ किनभने बरु धेरै नहोला
11: बजेट चाहिँ छुट्याइ पर्न जरुरी बा बेन ढ्युर नग्नी हुई तर सुरुवात गर्न जरुरी बा जहिले करबेर सचेतनाको कार्यक्रम जटरा खजाई ओट्रह काकर कलसे सापन से बज्ना सहज बा करानी हो हुक्रा खप नै कटना नि हो नि त जस्तो झपास बा हाम्रो घाँस काट गैल ब्याला च्याप्प पक्रली कलसे ऊ खटरा महसुस गरल नि त ऊ त मही मारकला बाकना हुइल दोस्रो कटना हुइल ऊ त आफन डगर जाइ नि पानी त असिन नसिन बाट जस्तो हाम्रो टिना बारी हुइल गोभी बारी महुल असिन नसिन घटना फि देख्ल ओसिन ठाउँमा जाइबेर फे तनिक चना खोख जाइ परल कुछु बाँकी कैख सोच विचार गर परल सरसफाइ बिबा हाम्रो निकाल बाटी पानी चल्ल बाटी सकुची देख पर्था तर फे कन बेला मनेनको दिमाग कहर गिल रठा कहाँ सोच टिरना टिना बारीमा जाइबेर फे ध्यान ओहिमा निरह स्याकट असिन बाटले फे हुइसेक था।
5: अन्तिममा आफ्नो हुकन कुछु सन्देश देना बाकलसे कहिन
6: मैले चाहिँ अन्तिममा के भने यो कार्यक्रम असाध्यै
11: राम्रो मै अन्तिममा का कहटु कलसे यी कार्यक्रम बडो मजा लागल मही हन यी सुरुवात कर्लक म अपना हुकन ढिहोर झुठाने बाट बा मै औरबाट का जोड दिहटु कलसे यी मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ल कोर्से मही हन फोन का कर आइत कलसे यी वन मन्त्रालयको योजना हो कै खैना हो तर उनी हो यी सकु जहनका हो सकु मन्त्रालय हो सकु 3 करोड नेपालीनका सच्या हो कना हिसाबले जैलसे हुई यी मन्त्रालयका ऊ मन्त्रालयका कैख छुट्याइबे तनिक अप्ठ्यारो हुई ठा यी वन मन्त्रालय केल ठर्नानी हो खै शिक्षा मन्त्रालय सको 25 मन्त्रालय सको मन्त्रालय हुँक्रा आफ्न कार्यक्रम धर्ख ग्रामीण समुदायमा स्थानीय सरकार मार्फत पुग्ले कलसे यी कार्यक्रम सफल हुई ओ हाम्रा सकु जहन फाइदा हुई ओ वातावरण चक्र निबिग्री वातावरण चक्र मजासी चलिकन महिलागत
5: धन्यवाद शशांक जी
7: अनि यो इम्पोर्टेन्ट
9: एकदम महत्वपूर्ण पहल हो यहीमा WWF नेपाल रोटरी सी मिल्कन नेपाल सरकारको नेतृत्वमा हाम्रा फिल्डमा गर्टिरहल कार्यक्रममा कहाँ ठे मिलाखा गर्टिरहलमा निविलसेखे भविष्यमा गर्न कार्यक्रममा ढेकन यहीन जनसमुदायमा ढिउसे ढिउ सचेतना पुगिलसे मृत्यु दर कम गराइक्लाक हाम्रा सँग मिल्खन काम गर्न कन हाम्रा प्रतिबद्धता पल रहनेबा तर मजा काम सुरुवात हुइबा वकरलाक रोटी लगायत सक्कु सरोकरालाई हुन्कन धन्यवाद
7: शुभकामना छ
5: डाक्टर निर्मल रिजाल सर्पदंश अभियानका लागि रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिडटाउन काकसिन जनचेतनामूलक अभियान काम गर्दीबाट बटाडिन
12: रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिडटाउनले
10: रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिडटाउन सन् 2019 काठमाडौँमा एक ठो वृहत अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दरहला सर्पदंश विषयमा जहाँ चाहिँ विभिन्न मुलुकके विज्ञ वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत हुक्रे अस्ट्रेलिया से युके से भारत बांग्लादेश नेपाल सक्कु मुलुकका विज्ञ हुक्रे जुटखा एक ठो सम्मेलन गर्दरही ऊ सम्मेलनका निचोड अन्त्यमा एक ठो निचोड कायल कलेसे जनचेतनक अभावकै कारणले धिर मनै सर्पदंश जोखिममा पर्छ ऐसिन जनचेतना रहत कलेसे हुक्रे ओसिन सर्पदंशक जोखिम मनसे बचेसेका सर्पदंश निहुट कलेसे मृत्यु हुन सम्भावना फे कम हुने रह ओसिन मेरिक सन्देश सहित ऊ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन ओराइ जयकार आधारमा रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिटाउँ काठमाडौँ एक ठो परियोजना निर्माण गरल ऊ परियोजना 4 वर्षे अभियानके रूपमा काम हुइटिबा ऊ मध्ये मिरमिरिक जनहितमा जारी रेडियो सन्देश 11 ठोबा जौन मध्ये 5 ठो रोकथाम हन छिटकै खन करागिल्बा कलेसे 5 ठो उपचार ओ ऊ मध्ये 1 ठो चाहिँ साप पर्यावरणके अभिन्न अङ्ग हुइटकन सन्देश सहितका बा कलेसे 11 एक ठो महत्वपूर्ण सन्देश काबा कलेसे साप काट डरलेसे का कर्न त खन एकदम महत्वपूर्ण ओहिमा कर पर्न काका होट कैखन ऊ बाट ऊ सन्देश बुझैन कोसिस गर्लबा ओस्निके रेडियो कार्यक्रम बा छोटी सन्देश ओ रेडियो कार्यक्रम मुलुक भरका 41 ठो FM रेडियो से प्रसारण होइन कर्ता उही मस हाम्रो सामाजिक सञ्जालमा से फे यी सक्कु सामाजिक सन्देश हन सामाजिक सञ्जालमा से फे जस्त फेसबुकमा से युट्युबमा से इन्स्टाग्राममा से फे यी सन्देश पुगाइ सेग्बी कलेसे विशेष कैखा युवा हुक्रे जे सामाजिक सञ्जालका प्रयोग कर्ता उहाँ हुक्रे जागरूक हुइसकिकन धारणा हो ओसिके पोस्टर बा पोस्टर फे दुनोर प्रिन्ट करागिल बा एक ओर हाम्रो रोकथामके सन्देश देले बाटी कलेसे एक ओर उपचार के सन्देश दिले बाटी यीसकको 5 ठो भाषामा नेपाली मात्र पर्लिबा ऊ बाहेक मैथली भोजपुरी अवधि ओ पश्चिम थारू भाषामा बा अब मै लास्टमा फे एकचो सम्झाइ चाहतुम हाम्रो वेबसाइट www.snakebitenepal.org यी वेबसाइट सर्च गर्बी कलेसे मै आघे कलक सक्कु सामग्री फे भेटाइ सिक्जै ऊ बाहेक सर्पदंश होख उपचार कराइ जैना एन्टी भेनम सेन्टरका फोन नम्बर यी कहाँ हो कुन ठाउँमा बा उहाँको सम्पर्कमा नै यहाँ के हो यी सक्कु बात यहीमा विस्तृत रूपमा दे गइल बा ऊ वेबसाइटमा आकुर धिर चिज बा अनुसन्धान हुइल न्युज पेपर अथवा पत्र पत्रिका छापा गैलक आर्टिकल हुइल स्वास्थ्य मन्त्रालय हो विश्व स्वास्थ्य संगठनका सर्पदंश सम्बन्धी प्रकाशन यी सक्कु बात उहाँ भेटाइ सेक्जेट विद्यार्थी अनुसन्धानकर्ता हुनको लागि यी वेबसाइट महत्वपूर्ण रहन गरल बा यी परियोजना चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रोटरी इन्टरनेसनलको रोटरी फाउन्डेसन का नबा वाकर एक ठो ग्लोबल ग्रेन्टले सम्भव भइलक हो उहाँकन फे हाम्रो ढेर धन्यवाद
5: अब हाम्रो सुनि सर्पदंश अभियानमा रोटरी कर्लक क्रियाकलापको विस्तृत जानकारी आजकी रेडियो कार्यक्रम जीवन सन्देशमा आफ्नो अमूल्य समय देख यी छलफलमा सहभागी हुनेलकमा हाम्रो विज्ञ हुक्रा प्रति हार्दिक आभार तथा ढ्यू ढ्यू धन्यवाद आप सुनि यी जानकारी मूलक रेडियो सन्देश
13: मुर्गी मुआडी खोजल फलामको जारी लगाएर पमुर्दिन खेती पुगाइनु थिए कि बेला प्राण दाखी डुर र बिना
14: हो होइन त का गर्न हो तपाईँ देख्छ कि जर लागेर बिना रहेछ देऊ तपाईँ त अपना घुम्का बारी हो त
13: हाम्रो त्यो सापन चाहिँ डराइ नानी भोलि मुख्र थियो अमन चाहिँ डराइ छ यदि त्यो जान अन्जानमा चलाइदा थियो प्रतिरक्षा करत लाग वा आफन बचाउ करत लाग साम दसना कर था
15: सापन से दूर रही सापन रिस नी लगाए वा नी जिसके साप मने देख डराइ छ नी चलाख दूर रहन छ साप नी दस्त तर मुख्र खैना खाज बाहिर निस्कल मेरा म खास काटे बिल ख्याल बिल ज्ञान बिल छु गेल छ मने वही मार्गबाट कना सबसक प्रतिरक्षा गर्न क्रममा साप दस लाख अर्थ मने सापन व्यक्ति की मारक लाग रहा था उसी का करवे फिर साप दस लाख अर्थ
16: सर्पदंश संबंधी भर पर्दो हो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लंघक सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाई लाग आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org मा हेर सेती था
5: आजुक यी रेडियो कार्यक्रममा सापन्से सहअस्तित्वमा रहकलाग व्यक्ति घर परिवार ओ समुदायक भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनाबाट जानकारीसँग नेपाल सरकार वन मन्त्रालय स्थानीय सरकारसे मिल्क साँप संरक्षण गर का कसिम कार्यक्रम सञ्चालन गर सेक्टिठा कना बातचित फे सुन्ली याकरसँग साँप पर्यावरणका अभिन्न अङ्ग हुइट हिक्रथे बाँच पाइ पठा हिकन पर्यावरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहना हुइला कोर्से सापन संरक्षण कर पठाकना जानकारी देती ऐना अठवारक और विषय प्रसंग लेख ऐना बाचा करते आज की प्रस्तुति मसे सहकर्मी संघ रेहकनक संग मई पुष्पा के बिदा हुटू नमस्ते
10: ई रेडियो प्रस्तुति में विद्वान पहुना हुक्रे बटवैलक वहां के निजी विचार मानजिने बा ओ नेपाल सर्पदंश रोकथाम परियोजना तरफ से अभिव्यक्त हुईलक आधिकारिक विचार कैख माना नि हुई
17: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
10: नि हुई
17: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडी

0: toilet pony, yeah.
1: Extreme energy drink.
2: व्यावसायिक कृषि पद्धति अप्नाएकला किसान हुक्रन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग ओ तालिम केन्द्र खजुरा बाँकेके विशेष अनुरोध
3: कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक पद्धति अप्नाई हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी ओ बनाई कृषि पेसा हे मर्यादित बनाएक उद्यमशीलता विकास कैके रोजगारी सृजना करी ओ कराई
2: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई
3: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू गरी
2: सफल उद्यमी बनी हो व्यवसाय हे निरन्तरता दि आगे बढाई हो बढाइक लगाई कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निसेकना हुईले ओहर से हमरे निजी और सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकार्य लाख प्रयास करी वो कराई
3: थप आवश्यक सरसल्लाह वो जानकारी लाग लगभग संघीय वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय वो स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करेक लाग अनुरोध बा
2: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग और तालीम केन्द्र खजुरा बाँके

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
2: टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
4: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज